सुप्रभात श्रोता साथियों, सुबह की सुनहरी सफर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूँ साथियों आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ इस ताजगी से भरी सुबह में हमारे दिन के सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नए सपनों की किरण लेकर आती है, और हम भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भी हो ज्ञान, प्रेरणा और मधुर संगीत के साथ में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की, जहां हर पल होगा खास, कुछ नया सीखने वाला और कुछ मन को छू जाने वाला, सिर्फ सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो पर। साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना, दिन की शुरुआत हो प्रभु के नाम से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़े गीतों को, जो आपके मन को शांति दे। तो आइए साथियों, ईश्वर की वंदना के साथ अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। इसी के बाद सुबह 6:30 पर होगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है और उनकी मेहनत से ही जीवन की थाली सजती है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं साथियों खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह को, ताकि खेतों में हरियाली बढ़े और किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिले। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। सुबह 7 बजे श्रोता साथियों, हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन। नन्हे मुन्ने श्रोता साथियों के साथ जहां होंगी रोचक कहानियां और ढेर सारी मस्ती, यह कार्यक्रम बच्चों की दुनिया को ज्ञान और संस्कार के रंगों से सजाता है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं, और मेरे साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। साथियों, इसी के बाद हम रुक करेंगे सुबह 7:30 पर, आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही देश की असली शक्ति है। इस कार्यक्रम में मिलेंगी करियर से जुड़ी जानकारियां और नए विचारों को मंच, ताकि हर युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और मेरे साथ होंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों सुबह 8 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सच्चा स्वराज, क्योंकि स्वराज केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता का संदेश भी है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। इसी के बाद दोस्तों हम रुक करेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास और परंपराओं की ओर। लोक संगीत में बसती है हमारी मिट्टी की पहचान, तो तैयार हो जाइए साथियों ढोलक, बांसुरी, मंजीरे की मधुर धुनों पर झूमने के लिए कार्यक्रम लोक संगीत में। इसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 8:30 पर। इसी के बाद दोस्तों हम फिर से बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर सुबह 9 बजे और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। दोस्तों, इसी के बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जिसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 9:30 पर, कार्यक्रम समस्या समाधान, जिसमें आप जानेंगे साथियों हमारे जीवन से जुड़ी समस्याएं और उनके समाधानों के बारे में। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों अब बढ़ते हैं फिल्म संगीत की ओर, क्योंकि पुराने नगमों की मिठास और नए गीतों की ताजगी ही हमारे मन को सुकून देती है। तो श्रोता साथियों, तैयार हो जाइए आपकी पसंद के सुपरहिट फिल्मी तरानों के लिए, जो आपके दिल को छू जाएंगे। तो श्रोता साथियों, जैसा कि रूपरेखा कार्यक्रम की आप जान ही पा रहे हैं, अब समय है सीधे आपसे जुड़ने का और आपकी बात सुनने का, कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, जहां आप सभी सुनेंगे आपकी राय, आपके अनुभव और समाज से जुड़ी बातों को। इसी के आगे साथियों दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो है सिर्फ आपके नाम। इस कार्यक्रम में बजेंगे वही गीत जो आपके पसंदीदा होंगे। आप अपनी फरमाइश और संदेश के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, जुड़े रहिए सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो के साथ में, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज ही है सबसे खास। तो श्रोता साथियों, यह तो थी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सुनहरी सुबह की कार्यक्रम आराधना से।

जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है, और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपरो सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणेमान स्वागत कर हो अमारे आजने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज अमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है कि मिट्टी ना कटाव ने अपने हरते रोकी शका ने कई कई वातों नु अपना ने ध्यान रखू है। तो आना विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तक घना कानी बातें थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले अपने हमरावी ना गीत ने मरे करा अपनी बात है। तो भाई बोनो आप हमारे रहसू आपड़ू रेडियो अपनी बात है वाग रेडियो 90.8 FM माते।

0: कि बहुत सी जगह थोड़ी बहुत बारिश हो भी रही है। ऐसे में हमारी जो खेत की मिट्टी है वो बहकर न चली जाए, उसके लिए क्या क्या उपाय हमें अपनाने हैं और हमारे जीवन में मिट्टी का क्या महत्व है?
1: जी बिल्कुल, वास्तविकता में अभी का जो समय है और हमारा वागड़ क्षेत्र जो है, इसमें मिट्टी का कटाव हमारी कृषि की उत्पादकता और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिहाज से बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है ये वर्षा आधारित क्षेत्र है और इसमें जो वर्षा होती है वो न्यूनतम 700 से जो है 1000 मिलीमीटर या कभी कभी इससे ज्यादा भी होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसी स्थिति में और ज्यादा जरूरी हो जाता है और हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि किस तरह से हमारी कृषि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए और मिट्टी के साथ हमारे पर्यावरण के संरक्षण को बनाए रखने के लिए इसके कटाव को किस तरह से रोका जाए जिससे हमारी उपजाऊ मिट्टी बहके ना जाए।
0: बिल्कुल।
1: और हमारी जो अमूल्य मिट्टी है उसको हम हमारे खेत में ही या हमारे गांव में ही बचा के रख पाएं।
0: बिल्कुल सर।
1: तो यदि हम मिट्टी के कटाव को रोकने की बात करते हैं तो इसके लिए प्रमुख रूप से हम इनको वर्गीकृत करके भी देख सकते हैं जिससे इनको समझना और करना भी हमारे लिए ज्यादा आसान हो सके। तो एक होते हैं इनमें कुछ प्राकृतिक उपाय, दूसरे यांत्रिक उपाय होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और तीसरा कुछ जैव उपाय होते हैं। जैव उपाय प्राकृतिक उपायों की तरह ही होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: पर इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से इनमें जो अंतर हैं और किनको इनको करके किस तरह से हम हमारी मिट्टी और पर्यावरण दोनों का संरक्षण करते हुए हमारी कृषि की उत्पादकता को जो है बनाए रख सकते हैं और बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इन उपायों को अपना कर ही हम हमारी मिट्टी को बचा सकते हैं और खेती में मिट्टी का जो महत्व है हम सभी भली भांति जानते हैं। तो सर, क्या ऐसे उपाय हमें करने की जरूरत है?
1: जी, यदि हम स्थानीय उपायों में या प्राकृतिक उपायों की बात करें तो प्राकृतिक उपायों में जो हमारे स्थानीय उपाय हो सकते हैं उसमें सबसे पहला है कि हमारी जो ढलान वाली जगहें हैं वहां पे हमको जो है कुछ बड़ी और लंबे समय तक चलने वाली घास का रोपण करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: जिससे दो तरह के फायदे हैं, एक तो हमारे पशुधन के लिए लंबे समय तक इससे घास मिलेगी और उसकी जड़ों की जो संरचना होती है वो इस तरह से होती है कि ऊपरी सतह की जो मिट्टी होती है वो इसको बांध के रखती है।
0: बिल्कुल।
1: और उस मिट्टी को बिल्कुल नहीं बहने देने से जो है वो रोकती है और इनका फैलाव जो होता है वो भी मिट्टी को संरक्षित करता है, क्योंकि आने वाला पानी जब हमारी मिट्टी के ऊपर सीधा गिरता है तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी को बहाता है।
0: बिल्कुल।
1: या मिट्टी की जगह को परिवर्तित कर देता है। तो जब इस तरह की घनी घास हम लगाते हैं तो इससे सीधे हमारी मिट्टी पे या जमीन पे वो पानी न गिर के पहले उनकी पत्तियों पे गिरता है और उसका जो बहाव है उसको वो कम कर देता है। तो इस तरह की जो भी स्थानीय घास हमारे पास उपलब्ध है हम उनको जो है लगा सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि ढलान वाली जगहों पे मिट्टी के कटाव को किस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं तो ढलान वाली जगह के समानांतर हमको जो है खेत बनाना चाहिए। तो खेत बनाने का मतलब यहाँ है कि हम जो जुताई करते हैं उसको ढलान के समानांतर करना चाहिए, न कि समान। यानी कि ढलान ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो हमको जुताई ऊपर से नीचे की तरफ न करके दाएं से बाएं या बाएं से दाएं करना चाहिए।
0: जी जी बिल्कुल।
1: जिससे आने वाले जो पानी है और उसके बहाव को हम नियंत्रित करके हमारी मिट्टी के कटाव या बहाव को रोक पाते हैं। इसी तरह से यदि हम इसमें बात करते हैं तो अंतर्वर्ती वृक्षारोपण किया जा सकता है जिसमें हम खेतों के किनारे पे या ढलान के बीच बीच में कुछ ऐसे पेड़ लगा सकते हैं जो पानी के बहाव के साथ मिट्टी के कटाव को भी रोकेंगे।
0: बिल्कुल।
1: और इससे हमारी भूमि की जलधारण क्षमता भी बढ़ेगी।
0: बिल्कुल।
1: अगर जिस तरह से हमने बात की कि हमारे स्थानीय और प्राकृतिक उपाय क्या हो सकते हैं, इसी तरह से यदि देखें तो दूसरा हमने जो बात की थी उसके अनुसार हम जो है कुछ यांत्रिक उपायों को भी अपना सकते हैं, क्योंकि तुरंत में यदि हम बात करें कि हम अपनी ढलानों पे उस तरह के पेड़ नहीं लगा पाए हैं या घास नहीं लगा पाए हैं, तो तुरंत इनको लगाना तो संभव है पर इनके लाभ को ले पाना संभव नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस स्थिति में हम तुरंत वाली स्थिति के लिए यांत्रिक उपायों को अपना सकते हैं, जैसे हम कंटूर बंडिंग कर सकते हैं, तो जो भी हमारी ढलान वाली जगहें हैं या खेत है उसके समानांतर मिट्टी के ऊपर जो है छोटे छोटे पत्थर के बांध बना सकते हैं छोटे छोटे, ताकि बहने वाले पानी को जो है नियंत्रित किया जा सके और उसके साथ में जो मिट्टी बह के आ रही है वो उसको रोक के रखेंगे। तो इस तरह से हमारी मिट्टी के कटाव और हमारी मिट्टी के होने वाले नुकसान को हम इससे नियंत्रित कर सकते हैं। इसी तरह से जो है स्टोन बंडिंग की यदि बात करें तो हम पत्थर को ही बांधने की बात कर रहे हैं इसमें भी, तो इसमें ये होता है कि ऊपर की तरफ हम छोटे छोटे कंटूर बनाते हैं और नीचे आके बड़ा बनाते हैं। तो जो थोड़ी बहुत मिट्टी बह के आई है या छोटे बहाव के साथ पानी जो तेजी से अंत में बह के जाना चाहिए उसको वो पूरी तरीके से रोकता है। इसके भी हमें वही लाभ मिलते हैं, हमारे भूमिगत जल को ये बढ़ाता है, हमारी मिट्टी के कटाव को रोकेगा और स्थायी रूप से धीरे धीरे हमारी संरचना को भी जो है ये सुधारने में मदद करता है। तो हमारे खेत की संरचना भी इससे सुधरना शुरू होती है। गली प्लग की बात करें तो ये भी एक यांत्रिक उपाय हो सकता है, और तो जहां पानी ज्यादा तेजी से बहता है वहां हम छोटे चेक डैम या बोरी बांध बना सकते हैं। इनसे हम पानी के बहाव को भी नियंत्रित कर सकते हैं, पानी को एकत्र भी कर सकते हैं, भूमिगत जल को भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से यदि बड़े जल प्रवाह को हम रोकने की बात करें तो उसके लिए चेक डैम या एनीकट, जिसमें हमें सरकार के साथ मिलकर योजना बनाने की आवश्यकता होती है, हमारी पंचायत के साथ समन्वय करने की जरूरत है, तो इनको अपनी योजना में शामिल कर सकते हैं। तो ये दो तीन तरीके से उसी तरह से हमको फायदा करते हैं कि ये हमारी मिट्टी के बहाव को रोकेंगे, पानी के बहाव को नियंत्रित करेंगे, पानी को एकत्रित करेंगे, हमारे भूमिगत जल को बढ़ाएंगे, और साथ में इससे जो अंत में सबसे बड़ा फायदा हमें मिलता है वो ये मिलता है कि हमारी जो मिट्टी थोड़ी बहुत बह के आ जाती है वो इन चेक डैम्स और एनीकट में आके रुक जाती है। तो जब ये खाली होते हैं तब हम अपनी मिट्टी को वापस ले जाके हमारे खेतों में डाल के हमारे खेत की उपजाऊ शक्ति को और ज्यादा जो है बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय में स्थानीय उपाय बताए, यांत्रिक उपाय बताए, यहीं सर जल प्रबंधन के क्या उपाय हैं जो हम कर सकते हैं?
1: जी, तो जल प्रबंधन ही हमारा जो है, वैसे देखा जाए तो जल और मिट्टी को तो अलग करके नहीं देखा जा सकता, पर क्योंकि जल प्रबंधन इसका एक महत्वपूर्ण अंग है और इसके बिना हम इसको नहीं देख सकते, तो जल प्रबंधन के उपाय भी हमारी मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और जल के जो है प्रबंधन इसके लिए जरूरी है। तो एक छोटा सा स्थानीय उपाय है कि हम जो है थावला बनाएं। तो पौधे के चारों ओर यदि हम थावला बना देते हैं तो थावला बनाने से जो है वहां पे पानी रुकेगा, और थावला क्योंकि थोड़ा सा गहरा होता है और उसके साइड में बॉर्डर ऊंची होती है तो इससे हमारी मिट्टी का बह के जाना भी जो है रुकना सुनिश्चित होगा।
0: बिल्कुल सर।
1: तो ये हम हमारे पेड़ या पौधों के आसपास जो है इसको बना सकते हैं। कई सारी जगहें हैं जहां पे या तो ऐसा लगता है कि पानी कम आएगा या कम पानी वाले क्षेत्र हैं जहां पे वर्षा जल कम होता है, तो वहां विशेष रूप से थावला बना के ही जो है बारिश की खेती या अन्य खेती मौसम में की जाती है।
0: बिल्कुल।
1: जिससे अधिक समय तक वहां पे जो है नमी और जल का प्रबंधन हो पाता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो आपने इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ये बताया कि हमें जल का प्रबंधन कैसे करना है। यही कृषि प्रबंधन के लिए भी हमें इस समय कुछ उपाय करने की जरूरत है, तो वो हम क्या कर सकते हैं?
1: जी, कृषि अंतर्गत जो हम प्रबंधन या उपाय कर सकते हैं उसके लिए हम सबसे पहली चीज जो देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी मिट्टी और पानी का जो नुकसान होता है या कटाव होता है या अपव्यय जिसको बोल सकते हैं वो होता है, तो ये ढलान वाली जगहों पे ज्यादा होता है। तो ढलान वाली जगहों पे हमको सीढ़ी नुमा खेती करने की आवश्यकता है, जिससे हर सीढ़ी पे हम हमारी मिट्टी और पानी के बहाव को नियंत्रित करके उसको रोक सकते हैं। इससे आसानी से हम बहाव और कटाव दोनों को जो है नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये सबसे उपयोगी खेती की पद्धति है जिसको हम ढलान पे सीढ़ी नुमा खेती के रूप में जानते हैं। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पे भी कई जगह पे इसको करते देखा गया है और ये हमारी परंपराओं में शामिल था, पर कहीं ना कहीं अब समय स्थितियों के परिवर्तन के कारण इसको कम देखा जाने लगा है, पर इसको करना जो है एक बेहतर उपाय है। उसी के साथ में यदि हम करना चाहें तो फसल को बदलना या ज्यादा तरह की जो है फसल को लगाना, ये दोनों चीजें जो है बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि हम खेत में लगातार जब फसलों को बदलते हैं तो इनकी जड़ों की संरचना किसी की गहरी होती है, किसी की उथली होती है, किसी की फैली हुई होती है, किसी की बांधने वाली होती है। तो अलग अलग तरह की फसलों की जो संरचना है वो मिट्टी को अलग अलग तरह के पोषक तत्व भी प्रदान करती है और मिट्टी की जो गहराई है उसको सुधारने में भी जो है अपना योगदान देती है।
0: बिल्कुल सर।
1: दूसरा, यदि हम अलग अलग तरह की फसलों को एक साथ लगाने योजना बनाते हैं तो इससे भी हम हमारे मिट्टी और पानी के नुकसान को जो है कम कर सकते हैं, क्योंकि जैसा अभी हमने फसल बदलने की बात की, इसी तरह से जब अलग अलग तरह की फसलें हम लगाते हैं तो इनकी जड़ों की जो संरचना होती है वो अलग अलग तरीके से हमारी मिट्टी और पानी के बहाव को नियंत्रित करती है और इसके कटाव को भी नियंत्रित करती है।
0: बिल्कुल सर।
1: तो एक और चीज होती है जिससे हम हमारी मिट्टी के कटाव और पानी के होने वाले नुकसान को भी जो है कम कर सकते हैं, इसको हम जब हमारे खेत खाली हो तब हम मूंग उड़द जैसी जो है मिट्टी को ढकने वाली फसलें बोए। इससे हमारी मिट्टी जो है जब ढकी रहेगी खाली समय में तो उससे हमारी मिट्टी में जो जल संचयन क्षमता है
0: बिल्कुल
1: वो बढ़ेगी, तो अधिक से अधिक पानी को जो है ये सोख पाएगी और मिट्टी में जैव तत्व बढ़ेंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह की फसलों को भी समय समय पे लगा के आने वाले समय में होने वाले हमारे मिट्टी के कटाव और पानी के नुकसान को हम जो है कम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि सर आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ये बताया कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हमें किन किन उपायों को अपनाना है, तो सर अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: अंत में हम जो हमेशा बात करते हैं, इसके लिए हम बात करते हैं बहुउद्देशीय कृषि वानिकी की। तो बहुउद्देशीय कृषि वानिकी हर किसान को जो है अपनाना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे लाभ हैं। ये मिट्टी का संरक्षण करते हैं, ये पानी का संरक्षण करते हैं, इससे हमें चारा हमारे पशुधन के लिए पर्याप्त मात्रा में मिलता है, हमें हमारे भोजन को पकाने के लिए लकड़ी मिलती है, हमें छाया मिलती है और समय समय पे मौसम के अनुसार हमें जो है हमारे परिवार के पोषण के लिए फल और अन्य सामग्री भी जो है इससे मिलती है। दूसरा, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो लगातार गिरते रहने से हमारी मिट्टी को अनेक तरह के पोषक तत्वों से समृद्ध और संपन्न बनाती है।
0: बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें ढेर सारी बातों को बताया है, तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: आपका और वागड़ रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं मनो जिम की अवड़े अपने वैस में मनीष जी जुड़े तक हता ने एने अपना ने घना काना तरीका बताया है जेने माध्यम तक की अपने मिट्टी कटाव ने रोकी सका। आशा कर रहा हूँ की हंगरी बातें आपने गमी होंगा, क्योंकि अभी टाइम थी गयो है अपने अनस कार्यक्रम तक सूटा पड़वा। तो सूटा तो पड़ा, पर साथ पहले हमारी लाइक और गीत तुम्हारे पड़ा सूटा।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7

0: से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आराज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागड़ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपनी साथी अंजलि पारेशर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। श्रोता साथियों, हमारा खास बाल जागरूकता कार्यक्रम जहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि जीवन की सही दिशा भी तय करती है। आज का विषय है पोषण वाली थाली की जीत। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि थाली भी जीतती है क्या, और अगर जीतती है तो किससे? चिप्स से, कोल्ड ड्रिंक से, या उन रंग बिरंगे पैकेट वाले खाने से जिनका स्वाद तो अच्छा लगता है लेकिन असर धीरे धीरे शरीर पर पड़ता है। आज के समय में बच्चों के सामने श्रोता साथियों सबसे बड़ी चुनौती यही आती है कि स्वाद और सेहत के बीच चुनाव करना पड़ता है। एक तरफ तुरंत मिलने वाला स्वाद जो जीभ को खुशी देता है, दूसरी तरफ पोषण जो शरीर को मजबूत बनाता है, दिमाग को तेज करता है और बीमारियों से बचाता है। लेकिन अक्सर श्रोता साथियों हम क्या चुनते हैं, वही जो तुरंत अच्छा लगे, और यहीं से शुरू होती है गलती। हमारे गांव, हमारे घर, हमारी रसोई, इन सब में पहले से ही पोषण छिपा हुआ है। दाल, रोटी, हरी सब्जी, दही, फल, ये सब साधारण दिखते हैं लेकिन असाधारण ताकत रखते हैं। फिर भी कई बच्चे इन्हें छोड़कर पैकेट वाले खाने की तरफ क्यों भागते हैं? क्या सच में स्वाद जीतता है या समझ की कमी हार जाती है? जानेंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से इन ढेर सारी बातों को। लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला यह गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने विषय से आपको रूबरू करा दिया था कि आज हमारी बातचीत होने वाली है पोषण वाली थाली की जीत। जी हाँ, जैसा कि गीत से पहले हमारा आपसे सवाल था कि कई बच्चे पैकेट वाले खाने की तरफ भागते हैं, क्या सच में स्वाद जीतता है या समझ की कमी हार जाती है। आज का ये नाटक भी इसी सवाल का जवाब देगा, जिसमें सिर्फ दो बच्चे हैं, कविता और सीमा। कविता जो है वो स्वाद की दीवानी है और सीमा जो है वो समझ की पहचान। दोनों की बातचीत में आपको अपने घर के बच्चे, अपने गांव की झलक, आपकी अपनी आदतें दिखाई देंगी। तो ध्यान से सुनिए, सोचिए और खुद से पूछिए आपकी थाली कैसी है, क्योंकि याद रखिए थाली सिर्फ पेट नहीं भरती, भविष्य भी बनाती है। तो आइए शुरू करते हैं पोषण वाली थाली की जीत।
1: कविता, आज मैं घर जाकर रोटी सब्जी नहीं खाऊंगी, मुझे समोसा चाहिए, चिप्स चाहिए और वो मसालेदार कुरकुरे भी, वही मजा है खाने में। रोज दाल रोटी कौन खाए।
2: अरे सीमा, स्वाद बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ स्वाद के पीछे भागना ठीक नहीं है। शरीर सिर्फ जिप से नहीं चलता, ताकत से भी चलता है, पता है तुम्हें? और ताकत जो है वो पैकेट से नहीं, पोषण वाली थाली से मिलती है।
1: अरे मैं खाती हूँ सब और ठीक हूँ, इतना सोचने की क्या जरूरत है, जो अच्छा लगे खाओ बस।
2: अरे सीमा, आज ठीक लगना और लंबे समय तक स्वस्थ रहना दो अलग अलग बातें हैं। पोषण धीरे असर जरूर दिखाता है, लेकिन गहरा असर भी करता है।
1: अच्छा बताओ कविता, तुम्हारी पोषण वाली थाली में ऐसा क्या खास है जो मेरे चिप्स में नहीं है?
2: बहुत फर्क है सीमा, पता है तुम्हें, थाली में दाल है, सब्जी है, रोटी है, दही है और फल भी है। इनमें शरीर बनाने, खून बढ़ाने, दिमाग चलाने और रोगों से बचाने की भी ताकत है। पैकेट में तो सिर्फ स्वाद है, पर अक्सर पोषण कम पाया जाता है।
1: मतलब कविता, पेट भरना और पोषण मिलना एक बात नहीं है?
2: बिल्कुल नहीं है, पेट तो बहुत चीजों से भर जाता है, लेकिन शरीर को सही चीज की जरूरत होती है। बस यही फर्क समझना जरूरी है हमारे लिए।
1: कविता, मैं जल्दी थक जाती हूँ, खेलते खेलते दम फूलता है, क्या इसका भी खाने से संबंध है?
2: हाँ सीमा, बहुत संबंध है। अगर खाना सिर्फ स्वाद वाला होगा और पौष्टिक नहीं होगा तो शरीर तो कमजोर होगा ही ना। आयरन, प्रोटीन, विटामिन, ये सब जरूरी है, और पोषण वाली थाली शरीर को सहारा देती है।
1: तो मतलब मेरी थकान सिर्फ आलस से नहीं कविता, खाने की गलती से भी हो सकती है?
2: हाँ हो सकती है, कई बार समस्याएं वही होती हैं जहाँ हम ध्यान नहीं देते हैं, और इसमें भूमिका निभाती है रंगों वाली थाली।
1: कविता, ये रंग बिरंगी थाली वाली बात क्या है?
2: रंग बिरंगी थाली मतलब थाली में अलग अलग रंगों के खाद्य पदार्थ, जैसे कि हरी सब्जी, पीली दाल, सफेद दही और लाल फल। जितने रंग उतना विविध पोषण, एक जैसी चीजें रोज खाने से सब जरूरतें पूरी नहीं हो सकती ना, इसलिए।
1: अरे वाह, थाली भी इंद्रधनुष जैसी हो सकती है?
2: बिल्कुल हो सकती है, और यही इंद्रधनुष थाली सेहत बनाती है।
1: पर कविता, चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक इतने लोग खाते हैं, अगर इतने गलत होते तो सब क्यों खाते?
2: हाँ तुम्हारा सोचना सही है, लेकिन हर लोकप्रिय चीज अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। कभी कभी सुविधा या फिर स्वाद ज्यादा बिकता है, लेकिन रोज वही खाना खाना ठीक बात नहीं है। कभी कभार अलग भी खाया जा सकता है, पर रोज की आदत पोषण वाली होनी चाहिए।
1: तो कविता, तुम्हारे कहने का मतलब मना करना नहीं है, बल्कि दोनों में संतुलन बनाना है।
2: बिल्कुल, क्योंकि जीत रोकने में नहीं, सही संतुलन में है।
1: कविता, दादी कहती है घर का खाना ताकत देता है, पर मैं हंसकर टाल देती थी, पर अब मुझे लग रहा है वह बात सच थी।
2: बिल्कुल सीमा, क्योंकि घर का खाना जो होता है ना, वो सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि भरोसा भी देता है। हम देखते हैं कि वो ताजा होता है, संतुलित होता है और ज्यादा सुरक्षित भी होता है।
1: मतलब कविता, रोटी दाल कोई मजबूरी नहीं, ताकत है।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि साधारण दिखने वाली चीजें कई बार सबसे कीमती होती है, और हम ये बात समझ ही नहीं पाते हैं।
1: कविता, मैं कई बार सब्जी छोड़ देती हूँ, बस रोटी खा लेती हूँ, क्या ये ठीक नहीं है?
2: सीमा, अगर शरीर को संतुलन चाहिए तो सबकी भूमिका होनी बहुत जरूरी है, और खाना छोड़ना तो बर्बादी भी है, इसलिए जितना चाहिए उतना ही खाना लो, लेकिन पूरा खत्म करो। यही आदत पोषण और बचत दोनों का संतुलन बताती है, और दोनों अच्छी चीजें हमें सिखाती है।
1: कविता, पहले मैं सब्जी से भागती थी, अब लग रहा है दोस्ती करनी पड़ेगी।
2: हाँ बिल्कुल, थाली से दोस्ती करो और कमजोरी से दूरी बनाओ।
1: कविता, खेलते समय मैं जल्दी थक जाती हूँ, तुम ज्यादा देर तक कैसे खेल लेती हो?
2: क्योंकि सीमा, तुम्हारा और मेरा खाना फर्क डालता है। सही भोजन ऊर्जा देता है, सिर्फ पेट भरना काफी नहीं होता, शरीर को सही ईंधन की आवश्यकता भी होती है। जैसे कि बिना अच्छे ईंधन गाड़ी नहीं चल सकती, ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी पौष्टिक खाद्य पदार्थों के बिना नहीं चल सकता है।
1: मतलब कविता, पोषण वाली थाली खेल भी जिताती है?
2: हाँ बिल्कुल, और यही तो असली जीत है।
1: अच्छा, अगर मैं आज से ही थाली सुधारूं तो क्या फर्क पड़ेगा?
2: धीरे धीरे तो बहुत ही फर्क पड़ेगा सीमा, ताकत, ध्यान, पढ़ाई, खेल सब पर असर दिखेगा, क्योंकि आदत एक दिन में नहीं बदलती, पर शुरुआत एक दिन से हो सकती है।
1: तो ठीक है, आज से मैं चिप्स कम, फल ज्यादा खाऊंगी, कोल्ड ड्रिंक कम, पानी ज्यादा पियूंगी, और सब्जी से दोस्ती करूंगी।
2: बिल्कुल, अब तुम समझ रही हो मेरी बात को, बस यही तो पोषण वाली थाली की जीत है।
1: कविता, पहले मैं सोचती थी स्वाद ही जीतता है, पर अब समझ आया असली जीत सेहत की है। पेट भरना काफी नहीं है, शरीर को सही पोषण चाहिए।
2: हाँ बिल्कुल, और जो बच्चा ये समझ लेता है वह खुद को मजबूत बनाता है। थाली छोटी जरूर दिखती है, लेकिन असर बहुत बड़ा करती है।
1: आज से मेरी थाली में रंग होंगे, संतुलन होगा और समझ होगी। अब मुझे पता है असली हीरो पोषण वाली थाली में है।
2: हाँ बिल्कुल, और यही हमारी कहानी की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि दाल रोटी सब्जी खानी है, ताकत अपनी रोज बढ़ानी है। रंग बिरंगी थाली जीते, स्वस्थ बचपन आगे जीते।
0: तो साथियों, आपने सुना स्वाद और सेहत की इस बातचीत में जीत किसकी हुई? पोषण वाली थाली की। याद रखिए कि बच्चों की अच्छी सेहत, अच्छी पढ़ाई, अच्छी बढ़त की नींव सही भोजन है। थाली में संतुलन रखिए, रंग रखिए, पोषण रखिए, यही असली जीत है। तो हमने आज कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि किस तरीके से पोषण वाली जो थाली है वो हमारे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि ये सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज किस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, आज की कहानी ने हमें यह नहीं कहा कि स्वाद छोड़ दो, बल्कि यह सिखाया कि संतुलन सीखो। जो थाली रंग बिरंगी होती है वही शरीर को असली ताकत देती है। जब बच्चे अपनी प्लेट में सही चीजें चुनना सीख जाते हैं तो वे अपनी सेहत की जिम्मेदारी भी खुद उठाने लगते हैं। यही आदत उन्हें आगे बढ़ाती है। आज घर जाएं, अपनी थाली देखें और सोचें कि क्या इसमें पोषण है। अगर नहीं तो बदलाव आज से शुरू करें। और कहना चाहेंगे कि एक माँ की रसोई, एक किसान की मेहनत और एक बच्चे की सेहत, ये तीनों एक थाली में मिलते हैं। जब हम उस थाली का सम्मान करते हैं, सही भोजन चुनते हैं, तो हम सिर्फ खुद को नहीं पूरे समाज को मजबूत बनाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप खाने बैठें तो याद रखें कि आपकी थाली आपकी ताकत बने और आप समझदारी चुने। तो आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेषर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है, ये हुके जाएंगा। खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
0: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: हमरो हमरो हमरो घणी बोने पूछे हैं, जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
2: तो हमरो बोनो, अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावो है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमीन माते नाम लकड़वो काटो नती, जैवरे अधिकार हंगरा अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
1: होवे भाइयों ने बोनो, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कशिश कि सीखने से बेहतर सृजन करना सीखना होगा।
0: जी जी।
1: यानी कि श्रोताओं, मनुष्य का जीवन केवल ज्ञान इकट्ठा करने के लिए नहीं बना है, बल्कि उस ज्ञान से कुछ नया रचने के लिए बना है। आज के समय में हर व्यक्ति सीखने में लगा हुआ है, कोई किताबों से सीख रहा है, कोई इंटरनेट से, तो कोई अनुभव से। लेकिन श्रोताओं, केवल सीखते रहना ही सफलता नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब हम सीखी हुई बातों का उपयोग करके कुछ नया सृजन करते हैं।
0: जी
1: सीखना
0: हाँ।
1: आवश्यक है, लेकिन उससे भी जरूरी है श्रोता साथियों सृजन करना।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें होंगी। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना दस्तूर है कार्यक्रम का, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वाग रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि सीखने से बेहतर सृजन करना हमें सीखना होगा। जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले भी हमारे युवा साथियों को यह बताया कि सीखना जीवन का आधार होता है।
1: बिल्कुल।
0: जो व्यक्ति श्रोता साथियों सीखना छोड़ देता है वह आगे बढ़ना भी छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि केवल सीखते रहना ही काफी है? नहीं है साथियों। असली बदलाव तब आता है जब हम सीखी हुई बातों से कुछ नया बनाना शुरू करें।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि केवल जानकारी इकट्ठा करना ही नहीं बल्कि उस जानकारी को उपयोग में लाकर समाज, परिवार और अपने जीवन के लिए कुछ नया तैयार करना ही सच्चा विकास होता है। जागृति जी,
1: जी हाँ,
0: जैसा कि आपने बताया है कि आज के युवा साथी मोबाइल और तकनीक के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे हैं। हर दिन श्रोता साथियों हजारों वीडियो, किताबें और जानकारियां हमारे सामने हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम केवल सीख रहे हैं या कुछ नया भी बन रहे हैं?
1: बिल्कुल।
0: क्या हम सिर्फ दूसरों की सफलता की कहानियां ही सुन रहे हैं साथियों, या फिर अपनी कहानी लिखने की कोशिश भी कर रहे हैं?
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि आज दुनिया में वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जो केवल नकल नहीं करते बल्कि अपनी सोच से नया रास्ता बनाते हैं। अगर हर व्यक्ति केवल दूसरों को देखकर सीखता रहता और कुछ नया बनाने की कोशिश नहीं करता तो आज विज्ञान, कला, तकनीक और समाज इतने आगे नहीं बढ़ पाते।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथी, हम कह सकते हैं कि सृजन ही प्रगति का आधार है। कहा भी क्या है कि सीखो जरूर लेकिन अपनी पहचान खुद बनाओ। एक बच्चा जब चलना सीखता है कशिश, तब वो केवल दूसरों की नकल करता है लेकिन धीरे धीरे वो अपनी समझ से नए काम करना शुरू कर देता है।
0: जी हाँ।
1: यही सृजन की शुरुआत है। जीवन में भी ऐसा ही होता है, पहले हम सीखते हैं, फिर अनुभव लेते हैं और बाद में अपने विचारों से नया निर्माण करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जो व्यक्ति केवल दूसरों की राह पर चलता है वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है, लेकिन जो सृजन करता है वही भीड़ से अलग पहचान बनाता है।
0: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। साथ ही हम देखते हैं कि जीवन में हर नई शुरुआत भी सीखने से ही होती है। जैसे कि बचपन

0: चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं साथियों, फिर घर पर ही हम लोगों से व्यवहार करना भी सीख जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि सीखने की जो ये प्रक्रिया है जागृति जी, वो इंसान को समझदार बनाती है। ये हमारी सोच को एक नई दिशा देती है। जैसे कि एक छात्र पढ़ाई से सीखता है, एक किसान मौसम और खेती से सीखता है, ठीक उसी प्रकार एक कलाकार अभ्यास से सीखता है साथियों, और एक खिलाड़ी मैदान से सीखता है।
1: जी हाँ,
0: यानी कि सीखने से अनुभव मिलता है और अनुभव से आत्मविश्वास पैदा होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए दोस्तों सीखना हमें कभी बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों केवल सीखते रहना और उसे जीवन में उपयोग न करना ऐसा है जैसे कोई किसान बीज तो इकट्ठा कर रहा है लेकिन खेत में बो ही नहीं रहा है।
1: बिल्कुल, जैसे कि आज के युवाओं में जानकारी की कमी नहीं है, मोबाइल और इंटरनेट ने ज्ञान का भंडार खोल दिया है कशिश, लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग केवल जानकारी इकट्ठा करने तक सीमित रह जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे सीखते तो बहुत है पर अपने विचारों को जीवन में उतारने का साहस भी नहीं करते, जबकि सच्चा ज्ञान वही है जो किसी नई सोच, नए कार्य, नई प्रेरणा को जन्म दे। सृजन केवल बड़े वैज्ञानिक आविष्कारों तक सीमित नहीं है श्रोताओं, एक किसान खेत में नई तकनीक अपनाकर सृजन कर सकता है, एक शिक्षक बच्चे को नए तरीके से पढ़ाकर सृजन कर सकता है, एक गृहिणी घर के कामों को आसान बनाने के लिए नए उपाय खोज सकती है, यहाँ तक कि एक छात्र भी अपनी सोच और मेहनत से नया विचार पैदा कर सकता है। सृजन हर व्यक्ति के भीतर छिपी शक्ति है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि सृजन का मतलब ही है कुछ नया करना।
1: बिल्कुल,
0: कुछ नया पैदा करना या नई सोच पैदा करना साथियों, जैसे कि किसी समस्या का समाधान खोजना। हम देखते हैं कि एक जो शिक्षक है वो बच्चों को पढ़ाने का नया तरीका खोजे तो यह भी एक सृजन है। एक किसान पानी बचाकर खेती का नया तरीका अपनाए तो ये भी श्रोता साथियों सृजन की ही प्रक्रिया है।
1: बिल्कुल,
0: कोई लड़की घर बैठे छोटा व्यवसाय शुरू करे ये भी सृजन है। यानी कि सृजन का मतलब केवल मशीन बनाना नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने वाली नई सोच विकसित करना भी होता है।
1: जी हाँ,
0: आज कई लोग बहुत कुछ जानते हैं, मोबाइल में श्रोता साथियों हजारों वीडियो सेव है हमारे, किताबें पढ़ी हुई हैं, मोटिवेशनल बातें याद हैं, लेकिन जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दोस्तों जानकारी तभी उपयोगी होती है जब उसे काम में लिया जाए।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के बारे में सब कुछ जानता हो लेकिन खुद स्वस्थ जीवन न अपनाए तो वह ज्ञान उसका अधूरा है। यदि कोई युवा सफलता के नियम तो पढ़ रहा है लेकिन मेहनत शुरू ही ना करे तो सीखने का लाभ भी उसे नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल
0: ठीक उसी प्रकार साथियों, दुनिया में बदलाव उन लोगों ने किया है जिन्होंने सीखी हुई बातों को सृजन में बदला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सृजन करना बहुत जरूरी है, यानी कि सीखना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारी युवा साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी ये बातें हम करते ही रहेंगे जागृति जी। लेकिन क्यों ना अभी मनोरंजन हमारे साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ करवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी कि सीखने से बेहतर सृजन करना बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल,
0: यानी कि कशिश हम बात करते हैं सृजन की, तो सृजन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर के डर को खत्म करना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उनका विचार गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे, यही डर उन्हें नया करने से रोक देती है। लेकिन याद रखिए, गलती करना असफलता नहीं बल्कि सीखने और सृजन की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति प्रयास करता है वही आगे बढ़ता है। और यही कहा भी गया है कशिश की, गलतियों से मत डरिए, वही सफलता का रास्ता खुलती भी है।
1: जी हाँ जागृति जी, अब यही प्रश्न ये उठता है कि हमारे युवा साथियों को सृजनशील बनना क्यों चाहिए, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उनके पास ऊर्जा होती है, नई सोच होती है और कुछ कर गुजरने का साहस भी होता है जागृति जी। और आज का समय हम देख रहे हैं कि प्रतियोगिता का समय भी है, लेकिन दोस्तों केवल डिग्री हासिल करना आपके लिए काफी नहीं है।
0: जी हाँ,
1: कंपनियां, समाज और देश ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो नई सोच रखते हो जागृति जी। ऐसे में समस्या का समाधान खोजना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सृजनशील युवा होते हैं वो हर परिस्थिति में अवसर खोजने की सीख रखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे शिकायत कम करते हैं और समाधान ज्यादा खोजते हैं। ऐसे में युवा समाज में एक नई रोशनी लेकर सामने आए हैं जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के समय में रोजगार की समस्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बहुत से लोग केवल नौकरी पाने के लिए सीखते हैं। यदि युवा सृजन करना सीख जाए तो वे स्वयं रोजगार पैदा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: नए व्यवसाय, नए तकनीक और नए विचार समाज को आगे ले जाते हैं। श्रोताओं, आत्मनिर्भर भारत का सपना अभी तभी पूरा होगा जब युवा केवल सीखने वाले नहीं बल्कि सृजन करने वाले बनेंगे।
1: बिल्कुल,
0: सृजन व्यक्ति को भीतर से खुश भी बनाता है। जब हम अपने हाथों से कुछ नया बनाते हैं तो आत्मसंतोष महसूस होता है, चाहे वो कविता हो, चित्रकला हो, संगीत हो, खेती हो या कोई नया काम। सृजन जीवन में उत्साह भर देता है, इससे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसका जीवन सकारात्मक बनता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें असफलता से डरने की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सृजनशील व्यक्ति है वह असफलता से नहीं डरता। कई कोशिशों में श्रोता साथी उनकी गलतियाँ होती है, लेकिन यही गलतियाँ आगे चलकर सफलता का रास्ता भी बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: जो लोग जागृति जी केवल सुरक्षित रास्ता चुनते हैं वे अक्सर सामान्य जीवन ही जीते हैं, लेकिन जो लोग नया करने का साहस रखते हैं वही इतिहास बनाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में यदि श्रोता साथियों पहली कोशिश सफल न हो तो निराश आपको नहीं होना है, क्योंकि हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि सृजन केवल प्रतिभाशाली लोग ही कर सकते हैं, लेकिन ये गलत धारणा है। श्रोताओं, हर व्यक्ति में कुछ नया करने की क्षमता होती है, जरूरत केवल उसे पहचानने और निखारने की है। छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ा बदलाव ला सकती है और एक छोटा विचार कभी कभी समाज की दिशा भी बदल देता है। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग दूसरों की नकल ज्यादा करने लगे हैं कशिश। कोई किसी की भाषा अपनाता है, कोई पहनावा अपनाता है, कोई जीवन शैली, लेकिन श्रोताओं असली पहचान नकल में नहीं बल्कि अपनी मौलिकता में होती है। दुनिया उसी को याद रखती है जो कुछ नया देता है। कहने का तात्पर्य यह है श्रोता साथियों कि हमें अपने बच्चों और युवाओं को ये सिखाना होगा कि वे केवल अंक लाने के लिए न पढ़े बल्कि समाज के लिए कुछ नया सोचे। शिक्षा का असली उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति में रचनात्मक विकसित हो। जब शिक्षा और सृजन एक साथ चलते हैं तब समाज में विकास और सकारात्मक बदलाव आता है।
1: जी हाँ, इसी के साथ हम देखते हैं कि जब कोई युवा अपने दम पर कुछ नया करता है तो वह केवल खुद नहीं बदलता बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि एक युवा यदि गांव में रोजगार शुरू कर रहा है जागृति जी, तो कई लोगों को काम मिलेगा।
0: जी हाँ,
1: एक युवती यदि शिक्षा के लिए अभियान चलाती है तो कई बच्चों का भविष्य बदलेगा।
0: बिल्कुल,
1: एक किसान यदि नई तकनीक अपनाता है तो इससे दूसरे किसान भी प्रेरित होंगे। दोस्तों यही सृजन की सबसे बड़ी शक्ति है।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि हमारे युवा साथी सपने तो देखते ही हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई कलाकार, साथी कोई सफल व्यवसायी, लेकिन सपनों को सच करने के लिए साथियों केवल सोचने से काम नहीं चलने वाला, हमें अपने सपनों को सृजन में बदलना पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि सपनों में मेहनत करने की आवश्यकता है, साथ ही अनुशासन और नए प्रयासों की भी जरूरत होती है। ऐसे में दोस्तों आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपके भीतर अपार शक्ति छिपी हुई है।
0: बिल्कुल,
1: केवल दूसरों को देखकर जीवन मत बिताइए, अपने भीतर की प्रतिभा को भी पहचानने की कोशिश कीजिए।
0: जी हाँ,
1: सीखिए जरूर, लेकिन केवल सीखकर मत रुकिए, क्योंकि जो सीखा है उससे कुछ नया बनाना है आपको। अपने गांव, अपने समाज और अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना है साथियों जिससे लोग आपको याद रखें।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि जो नया सोचता है वही समाज को आगे बढ़ाता है। हमें अपने जीवन में हर दिन कुछ नया करने की आदत डालनी होगी। नया विचार, नया तरीका, नई कला, नया समाधान, यही सृजन है। जब हम सृजन करना सीख जाते हैं तब हमारा जीवन केवल सामान्य नहीं रहता बल्कि प्रेरणादायक बन जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोता साथियों आपसे यही कहेंगे कि सीखने से आगे बढ़ते हैं और सृजन करके दुनिया बदलते हैं। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ और आज की इन्हीं बातों को हम यह विराम देना चाहेंगे, क्योंकि समय का मान रखते हुए अब हमें विदा लेना होगा।
1: बिल्कुल,
0: तो विदा हम जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ जागृति जी,

0: साथ ही इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है, परंपरागत वाद्य यंत्रों का क्या महत्व है और ये वाद्य यंत्र से हम किस तरह से आनंदित होते थे, उत्साहित होते थे और अपने घरों में खुशियां मनाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वाद्य यंत्रों के महत्व के बारे में जरूर जानेंगे, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं परंपरागत वाद्य यंत्रों के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे स्टूडियो में प्रभुलाल जी आए हुए हैं, वो हमें बताएंगे कि किस तरह से वाद्य यंत्रों का महत्व था और आज के समय में ये वाद्य यंत्र कहीं लुप्त हो गए हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इन्हें हम वापस कैसे ला सकते हैं, इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें लेकर आज प्रभुलाल जी हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो पहले सुन लेते हैं उन्हीं की बातों को।
1: बिल्कुल। राम राम प्रभु काका।
2: राम राम।
1: प्रभु काका, आपनु घने मान स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जिम की आज आप हमारे कार्यक्रम तक जुड़ी रहो ने आज हमारे कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नु विषय है परंपरागत वाद्य यंत्र ने लेने। तो सबसे की पहला आप मने ये बताओ कि आ वाद्य यंत्र नु अपने जीवन में हो महत्व है।
2: घनी खरी अच्छी बात करी के हमारो जी परंपरागत जी वाद्य यंत्र है ये हमारो जी समुदाय की खास चीज है।
1: होवे,
2: चाहे शादी हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे केहू भी मतलब अच्छू बुरु कार्यक्रम हो, तो हमारे जी परंपरागत वाद्य यंत्र है उपयोग में ला, ताकि एने थे कि हमारे क्या भी प्रकार नो कोई भी नुकसान नहीं था। नुकसान एटले मतलब हम जी लो के कई भी मतलब अगर कोई भी मतलब अगर डीजे है तो आने थे कि हमारे समुदाय में नुकसान थी रही है कि भाई डीजे थे कि वहां के ना तो आपने जी परिवार है आना परिवार ऊपर गलत प्रभाव पड़ी रही है। तो एना बदले ई जी है वाद्य यंत्र डीजे वगैरह है ई मतलब समुदाय ने बिल्कुल एने प्रतिबंध लगा दीदू कि डीजे अपना समाज नो नुकसान करे तो इन्हें बदले नुकसान करे ये चीज बंद कर दिए। अने पामार जी परंपरागत जी वाद्य यंत्र था जे हमारी ढोल कुंडी थाली सहनाई ये हमारे समाज में लागू कर दीदू। तो आने थे कि हमारे समुदाय में खूब अच्छो फायदो थी रियो है अने कम खर्चा में आराम थे कि आपनो काम निपटावी सके।
1: होवे, जिम की आपे कीधुं के वाद्य यंत्रों नो घणा कनो महत्व है ने आपड़े जे आदिवासी समुदाय ना जे परंपरागत वाद्य यंत्र है ई आपड़ा बल्ले घणा महत्व राखे है। ता कया कया वाद्य यंत्र है ने नो हु महत्व है ई भी आप अपने भाई बहनों ने बताड़ी दो।
2: बराबर है। तो हो के अमारो जी पुरानी जी हमारी जी संस्कृति ने अनुसार हमारो जी ढोल है हमारो देसी, हमारी जी कोंडी है हमारी देसी, हमारे घर नी थाली है अने हमारी सहनाई है।
1: होवे,
2: ई हमारा मुख्य हमारे वाद्य यंत्र है जेने थे कि हमारे सब काम साली रही है।
1: होवे,
2: ती हमारा समुदाय बदले खूब अच्छो फायदो है ताकि हमारी अब्बा वाली पीढ़ी है ई बीड़ी बात ने भूले नहीं।
1: होवे, सिम के आपे कीधु के अपना जे वाद्य यंत्र है ये अपना बल्ला घना जरूरी है ना अब्बा वाली पीढ़ी ने भी अपना ने आ हिकालवी है। तो अपने देखो हो के जे युवा है ये अवड़े ना टाइम में अणी सब चीज ने नहीं मानते, ई अवड़े आधुनिक थी गए हैं। सिम की आप बात करी डीजे वीजे नी ई तो एना ने माते वधारे ध्यान आले है, एना तो की वधारे आकर्षित थाय है। तो आपड़े आपड़े जो युवा है एना ने हरते अणी दिशा ने आड़ी लई जाई शको।
2: बिल्कुल, एम विचार थाई रियो है कि भाई समुदाय में आपड़े जी बुजुर्ग व्यक्ति है जी प्रतिष्ठित व्यक्ति है गाम ना ये हमारा जी समझदार व्यक्ति हमारी महिला बहने जी समझदार है या भाई समझदार है पुराना जेटला भी हमारा जी रीति रिवाज तो इन्हें बारे में हमारा जी व्यक्ति है ये युवा पीढ़ी थे की भी बात कर दिया है कि भाई सोरे आड़ी बात ने तमने मानो पड़ेगा। अगर तमे अगर आड़ी बात ने नहीं मानोगा तो आ धीरे धीरे धीरे अपनी जी संस्कृति धीरे धीरे खत्म थी जाएगा। तो इन्हें बसाओ बदले इन्हें जीवित रखो बदले अपने ने पुरानो जी हमारो जी वाद्य यंत्र है इन्हें वगाड़ो तमे अने आनो जी अपनो जी उपयोग करो ताकि अब्बा वाली पीढ़ी है ये आने भूले नहीं अने आ जीवित रही सके। एना बदले हमारी जी युवा पीढ़ी है इन्हें हमारे बुजुर्ग माध्यम थकी मार्गदर्शन मिली रू है ताकि ई कम से कम एनी वात ने समझे अने आगाड़ी नो उपयोग करी शके।
1: होवे, तो जिम के आपे कीधु के आपन पड़े गामना जे बुजुर्ग बदले मन कहे एना ने माध्यम थकी आपड़े युवा साथी ने अणी चीज बदले जागरूक करी रह। तो आप तकी मु ई जाणू चाहूंगा कि आज जे चीजे है आधुनिकता ने आड़ी आपड़े जे वधी रह जेम आपड़े डीजे ने अलग अलग एवी चीजे माते निर्भर थई रह ये आपड़े जीवन में हुं नुकसान पुगाड़ी रही।
2: ई सबसे मोटी वात तई है तो शिक्षा ऊपर दुप्रभाव पड़ी रही है कि शिक्षा ऊपर मतलब हम जी लोग मतलब बच्चों डीजे ऊपर जाएगा तो ध्यान पिलियाड़ी जाएगा। तो बीजी बात हूँ थी कि हमारो जी बिल्कुल एकदम कम उम्र ने जी सो रहे हैं ई भी मतलब डीजे ने उपयोग कर दिया है या मतलब कोई भी वाद्य यंत्र मतलब जी आधुनिक जी वाद्य यंत्र है इन्हें उपयोग करेगा तो समुदाय में हमारो जी पुरानी जी संस्कृति तो खत्म थी जाएगा अने आनी डीजी प्रथा अगर आवी गई तो पसे हमारी जी संस्कृति जीवित नहीं रही सके तो इने बदले हमारा नुकसान थी रही है। बीजी बात के भाई पुराण जो हमारो जी वाद्य यंत्र हाथे जो कोई गीत हता हमारे जी भजन हता ई भी इने हाथे वगाड़ता था अने इने गाता था तो अगर इनो उपयोग करवो अगर भूली गया तो हमारे समुदाय ने खूब नुकसान थी जाएगा। ताकि हूँ के अब्बा वाली पीढ़ी है ई भी भटकी जाएगा समाज थकी एटले इने जीवित राखवो बहुत जरूरी है। इन्हें बदले अमने आना काम ने करवो जरूरी है कि हमारो जी पुराने जी हमारे वाद्य यंत्र है इन्हें हमें वगाड़ हमारे जी युवा पीढ़ी है इन्हें हमें मार्गदर्शन आल अने आगाड़ी बढ़ता रह ताकि कई वक्त भी हमारो उन्हें नुकसान नहीं थी सके। तो आने बदले अमने जी युवा पीढ़ी है अने इन्हें हमजाड़ा बदले खूब घनी खरी बातें हमारा जी बुजुर्ग व्यक्ति है इन्हें माध्यम तक किसी इन्हें समझ पड़ेगा क्योंकि यही हुआ कि पुरानी जी बातें हैं ये हमारे बुजुर्ग करने हैं तो हमें हूँ है कि भैया डीजे है डीजे थकी खूब पैसों खर्च थी रही है ये हमारा समाज में नुकसान है अने जी युवा पीढ़ी है अगर डीजे नहीं लावे तो परिवार वाला जी घर वाला है एंड माता पिता है भाई बहन है भी परेशान करी कि भाई हमारा आने वगैरह हमारे काम था नहीं अगर तुम्हें डीजे लाओ तो हमें शादी नहीं कर यो प्रकार ने वो माथे वो बोझ नाखे तो ये हमारे लिए खूब नुकसानदायक है। तो इन्हें बदले हमने विशेष करीने युवा ने हाथे लाबा जरूरी है कि अगर इन बात ने अगर हमारे जी बुजुर्ग व्यक्ति है इस इन्हें सलाह आ ली सके समाज ना जी प्रतिष्ठित व्यक्ति है ई सलाह आ ली सके ताकि कम से कम इन बात ने गा हम जी सके ताकि हमें इन्हें थकी बसी सक आर्थिक दृष्टि थकी भी हमारी जी कमजोरी है ई भी दूर થઈ શકે
1: હવે
2: તો આ મારું વિશેષ કરીને આની વાત ઉપર કેવું હોય
1: હવે તો જેમ કે બબુ કાકા આપે બતાડ્યું કે હરતે આ જે આધુનિક વાદ્યયંત્ર હે એનો નુકસાન હે ને હરતે આપણે જે યુવા પેઢી હે એન તકી આકર્ષિત થઈ રહી હે જે બુઝુર્ગને માર્ગદર્શન તકી સેટી થઈ શકે તો જેમ કે ઘણી અસલ વાતે આપ અમારા ભાઈ બહેનોને બતાડી રહો તો આ એસ હું જાણવું ચાહુંગા આપ તકી કે હું પરિવર્તન આવ્યું હે
2: પરિવર્તન બિલકુલ જે 5 સાલ પહેલે डीजे वगैरह सालतुस ने तो ने आजे बिल्कुल समुदाय में खूब परिवर्तन आवी गयो। तो कहीं मतलब हम जी लो के पूरा क्षेत्र में काकक वगी रही है बाकी सब बंद कर दी दो डीजे प्रथा बिल्कुल बंद थी गई ने हमारे जी पुराने जी वाद्य यंत्र तेग चालू करी देता ताकि समुदाय में काहे नुकसान नहीं थाएगा। तो आज ना तारीख में खूब परिवर्तन थी गयु है तो आमे मतलब हमारो जी वाद्य यंत्र है इनो आमे प्रयोग કરી
1: રહ્યા હવે તો જેમ કે પ્રભુ કાકા આપે બતાડ્યું કે પરંપરાગત વાદ્યયંત્ર કયા કયા હે ને હરતે સમુદાય મે બુઝુર્ગ ને માર્ગદર્શન ને હમસ્તે તકે આપણે જે યુવા સાથી હે ઈ એનમે ભાગીદારી નિભાવી રહે હે તો મો આપ તકે એવી જાણું ચાહુંગા કે આપ અમારે કાર્યક્રમ મે સહી વખત ભી જોડો હો તો કાર્યક્રમ ને માધ્યમ તકી એક ગીત ભી હમરાવો હો તો એક અચ્છો સુ બઢિયા સુ ગીત આપણા ભાઈ બહેનો ને હમરાવી દો તાકે એને ખબર પડે કે હરતે આપણને આપણી જે સંસ્કૃતિ હે એની બચાવવું હે।
2: बहुत अच्छी बात करी भैया ते किमके वे ते सबने इंतजार ते रेस खरु के भाई का इनके नवो गीत हमड़ावेंगा तो अपने गीत हमड़ावी द। अरे रे भाया गाँव गाँव में के जूरे अरे के जूरे ढोल कुंडी नोरण को वागे सबने के जोरे रे भाया गाँव ढाणी माँ के जोरे अरे के जोरे ढोल कुंडी नोरण को वागे सबने के जोरे अरे काका ने के जोरे रे तमे काकी ने के जोरे अरे भाया ने के जोरे रे

0: रे भाया गावडाणी मा के जो रे अरे के जो रे ढोल कुंडी नो रण को वागे सब निके जो रे अरे रण को वागे रे भाया ढोल कुंडी वागे रे भाया गाव गाव में के जो रे पुरानो आपड़ो वाद्य यंत्र सबने के जो रे अरे पुराण वाद्य यंत्र थकी हमारी जिंदगी बसेगा भई अरे पुराण वाद्य यंत्र थकी हमारो समाज सुधरेगा भई रे भाया गावठाणी में के जो रे अरे के जो रे आपड़ा गांव में सबने के जो वाद्य यंत्र निवास अरे सबने के जो रे रे भाया सबने के जो रे रे भाया गावठाणी मा के जो रे अरे के जो रे ढोल कुंडी नो रण को वागे सबने के जो रे रे भाया ढोगाव के जो रे अरे के जो रे ढोल कुंडी नो रण को वागे सबने के जो रे।
1: સેમ કે પ્રભુ કાકા આપે ગીતની માધ્યમ થકી આપણે ભાઈ બહેનોની પરંપરાગત જે વાદ્ય યંત્ર હે એને મહત્વની વારામાં ઘણો અસલ સંદેશ આલ્યો હૈ તાપનું હું ધન્યવાદ કરવું ચાહુંગા કે આપ અમારે કાર્યક્રમ થકી જોડ્યા ને અમને આટલી અચ્છી જાણકારી આલી
2: ધન્યવાદ
1: જાગૃતિજી જૈસા કે અભી હમારે બીચ મેં પ્રભુલાલજી જુડે હુએ થે ઓર ઉનકે માધ્યમ સે હમ બહોત અચ્છી તરીકે સે યે જાન પાએ कि किस तरीके से हमारे जो परंपरागत वाद्य यंत्र हैं उनका एक अलग ही महत्व है।
3: बिल्कुल।
1: लेकिन अभी के समय में आधुनिकता के बढ़ते कई ऐसे युवा साथी हैं जो इन सारी चीजों से दूसरी ओर रुक कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार के जो डीजे हैं उन पर उनका ध्यान आकर्षित हो रहा है, तो किस तरीके से हमारे समाज के जो बुजुर्ग है वो उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं और उन्हें सही राह दिखा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
3: जी हाँ।
1: क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
3: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वाद्य यंत्रों को लेकर, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ,
0: इन्हीं उम्मीद के साथ आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है, ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है जोड़ों में दर्द, उसके कारण और उपाय को लेकर। कशिश, हम देखते हैं कि जोड़ों में दर्द आजकल एक आम समस्या बन गया है। यह समस्या बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी हो सकती है। हम देखते हैं कि बदलती जीवन शैली, गलत खान पान और शारीरिक मेहनत की कमी इसके मुख्य कारण माने जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि समय रहते इसके लक्षणों को पहचान लिया जाए तो सही समय पर इसका उपाय किया जा सकता है और दर्द से राहत पाई जा सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो इसी विषय को लेकर हम श्रोता साथियों से आज कार्यक्रम में ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए पहले गीत सुन ले हम।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में होने वाली स्वास्थ्यप्रद बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखा है, तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हमरो घणी बोने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
4: तो हमरो बोनू अरी सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है। पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावो है। फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जय वरे अधिकार हंग्र अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
3: होवे भाइयों ने बोनो, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनो, आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है।
1: होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
5: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ई हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
5: ओ अंजलि बोन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
5: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कह कि पानी बचावो, पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान में आप सबनु स्वागत है। मोहु आपने हाथे आपनी पूर्ण अंजलि पारेश्वर
1: ने मोहु आप सब नि बोन जागृति
0: स्वीकार करो अम्बेनु
1: राम राम।
0: भाई बोनो आप हम रे हो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते
1: जिम की भाई बोन कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने अमे हाजिर थे के हा ने आजना ना कार्यक्रम ने माध्यम थे की अमे बातें करा रहा हा की एक अच्छा समाज नी हूँ पहचान है ने अच्छा समाज हूँ केवा है ने समाज में हूँ समस्या आवे है ने समस्या ने बाद अपने हूँ समाधान करी सको इना सब माते आज अपने अंजलि बोन बातें करवा रहा
0: हो पे। तो जागृति बोन आपने देखा हो कि समाज सिर्फ अपने मन का ना समूह नहीं बल्कि समाज ही जगह है जे अपने एक बीजा हाथे रह हो खुशियां वाटा हो एक बीजा ना दुख में हाथे उबर ने मल्ली ने भविष्य ने बेहतर बनावानी दिशा में काम कर रहा पर अवड़े ना टाइम में घनी आकी हुई जगह आपने देखा हो जे समाज में आपसी दूरी बढ़ी रही है सहयोग कम थी रू है ने नानी मोटी बात माते विवाद वधी रू है तो एवं में अपने ने आ समझवन जरूरत है कि एक असल समाज नी हूँ पहचान है ने आ समाज अपने हरते बनावी शक
1: हो अंजलि बोन। तो जिम की आपने बात करो कि समाज हूँ है तो भाई इन बोनो आजे आपने देखे कि घना समाज में घड़ी भी समस्या आपने देखा हाँ जे आपने एक बेहतर समाज बनवा थे की रुकी दी है सबसे की मोटी समस्या अंजलि बोन है आपसी विश्वास नी कमी आजे लोग एक कभी समाते भरोसो कम करी रहे हैं पहले जे गांव हता मोहल्ला हता इनमें लोग एक कभी जाने गरम में बिना संकोच तक की आबो जावो करी लेता था पर आजे आपने देख के रहा कि घना जगह माते आपने जई तो रहा पर आपरोपन जे है ई कम था तो जई रू है आजे आपने जई रहा लेकिन आपने इम लगी रू है कि मन का आपने अपनत्व नती आली रहा या पसे आपने देखी रहा कि कोई आपने घरे आवी जाए तो आपने गमतू नती पर पहले जमाना नी बात अलग हती पहले जमाना में मन का वाट जोतो था कि आपने घरे मेहमान कार्य आवेंगा
0: होवे इने साथे जागृति बोन आपने देखो हो बीजी समस्या है स्वार्थ नी बढ़ती भावना आपने देखो हो कि घणी वगत आपने सिर्फ आपने फायदा ने बारे में विचार कर रहा हूँ समाज ने पड़ोसी ने हित ने बारे में कम विचार कर रहा हूँ पर आपने देखते होता कि पहले ना जो मनक हता ये सब ने हाथ लेने हिंटता था ने आपने देखी रहो कि अवड़े आज स्वार्थ नी स्थिति बढ़ी रही है इनमें सिर्फ व्यक्ति जे है ये खुद आपने बारे में सोचे है इने कारण समाज आपने कमजोर पड़ी रू है
1: होवे ने अंजलि बोन समस्या नी बात करीस रहा तो आपने देखा कि आपने आज छोटी छोटी बातों माते झगड़ो थी जाए विवाद थी जाए आपने देखा कि जमीन माते झगड़ो थी जाए पानी माते झगड़ो थी जाए आपने जो हैंडवानो रास्तो है इन लेने झगड़ो थी जाए आ सब समाज में तनाव पैदा करी रहे हैं आ सब जो झगड़ा है इस समय ने लेने है पैसों ने लेने है ने रिश्ते ने लेने है आपने देखा कि अंजलि पुन आ सब झगड़ा में अगर आपने पड़ी रहा तो आपको समय भी खराब थी रू है पैसों भी जई रो है ने रिश्ते ने भी आपने नुकसान आ ली रहा क्योंकि जई वरा एक वक्त विवाद थी जा तो बीजी वरा आपने पेलू अपनत्व नती रहतु रिश्ता में
0: होवे जागृति हो ना आपे सही कीधु आपने देखा हो कि अवरे टाइम में आपड़ो जो समाज है एवी माते लड़ाई झगड़ा विवाद करे है कि अपने घर ना जे नाना सोर है ये भी घनी वक्त पूछी ले है कि आओ केम थी रू है आटली सिस्त बात है आन में आटली लड़ाई केम थी रही है तो अपने सब ने समझवू होगा कि आ लड़ाई अपने केम करी रहा इने साथे अपने देखो हो कि अपने घर में घना मोटा मन कर रहे है एना ना अनुभव नी भी घना मनक अनदेखी करी रहे है अपने देखो हो कि अपने जे बुजुर्ग है ये जीवन ना लंबा अनुभव लेने बैठे थक है પણ આજના ટાઈમમાં એનાની વાતને કોઈ મહત્વ નથી આલી રહ્યું આપણે દેખી રહ્યો કે અવડેનું જે સમાજ છે એ એનાને જ્ઞાન તકી વંચિત છે જે એનાને સહી દિશામાં નથી લઈ જઈ રહ્યો એની સાથે આપણે દેખો કે સામાજિક જિમ્મેદારીની કમી ભી થઈ ગઈ છે ઘણી વખત આપણે દેખો કે કોઈ ભી મનક જે હે એ સાર્વજનિક જગ્યા માટે ગંદગી ફેલાવવામાં કોઈ સંકોચ નથી કરતો આપણે દેખો કે સામુદાયિક સંપત્તિને નુકસાન ઘણા મન કા આલે હે ને આ જે સમસ્યા હે ઈ અવડેના ટાઈમ મે આપણે દેખી રહ્યો ને આ સમસ્યા ને કારણ આપણે દેખો કે આ જે ચીજે હે ઈ ધીરે ધીરે

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है बदलती खान पान की आदतें और गर्मी में खान पान का ध्यान कैसे रखें।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे खान पान की आदतें तेजी से बदल रही है।
0: जी हाँ,
1: पहले जहाँ घर का बना सादा और पौष्टिक भोजन हमारी थाली की पहचान हुआ करता था, वहीं मनीषा आज फास्ट फूड, पैकेट वाले स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और बाहर के खाने ने हमारी दिनचर्या में बड़ी जगह बना ली है।
0: बिल्कुल,
1: खास तौर पर गर्मी के मौसम में गलत खान पान न केवल हमारी ऊर्जा को कम कर देता है बल्कि कई तरह की बीमारियों का कारण भी बन सकता है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि बदलते खान पान की आदतों के बीच हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और गर्मी में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बताया ही था कि आज हम बात करने वाले हैं बदलते खान पान की आदतें और गर्मियों के मौसम में हम सही खान पान का ध्यान कैसे रखें।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज के समय में हमारी जीवन शैली तेजी से बदल रही है, इसके साथ ही खान पान की आदतों में भी बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है।
1: जी हाँ,
0: पहले लोग घर का ताजा भोजन, मौसमी फल, सब्जियां और पारंपरिक पेय पदार्थों का सेवन करते थे, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि ताजा फास्ट फूड, पैकेट बर्न पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक और अधिक तेलीय भोजन का चलन बढ़ रहा है।
1: जी हाँ।
0: बदलते खान पान की आदतों का सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर हमें देखने को मिलता है। विशेष रूप से श्रोता साथियों, गर्मियों के मौसम में अगर हम भोजन और पेय पदार्थों का चयन सही ढंग से नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में पानी की कमी, थकान, लू लगना, पाचन संबंधी समस्या और कई स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि समय के साथ बदलाव जो है वो स्वाभाविक है। आज लोगों के पास पहले की तुलना में सुविधाएं अधिक है,
0: बिल्कुल
1: समय कम है, इसी वजह से लोग जल्दी खाना बनने वाली जो चीजें हैं या तैयार खाद्य पदार्थ जो है उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं।
0: जी हाँ।
1: बच्चे और युवा अक्सर पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चिप्स और मीठे पेय पदार्थों का सेवन पसंद करते हैं। कई बार सुबह का नाश्ता छोड़ दिया जाता है और दिन भर चाय, कॉफी और जंक फूड के सहारे काम चलाया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, इन आदतों का असर धीरे धीरे शरीर पर दिखाई देने लगता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, मोटापा बढ़ने लगता है, थकान कमजोरी महसूस होने लगती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है।
0: जी हाँ।
1: सबसे बड़ी बात यह है मनीषा कि हम स्वाद को प्राथमिकता देने लगे हैं जबकि स्वास्थ्य को पीछे छोड़ रहे हैं। श्रोता साथियों, यदि हम कुछ वर्षों पीछे जाएं तो हम पाएंगे कि गांव और कस्बों में लोग मौसम के अनुसार भोजन करते थे, जैसे कि गर्मी में छाछ, मट्ठा, राबड़ी, बेल का शरबत, सत्तू और मौसमी फल और ज्यादातर यही चीजें खाई जाती थी। वहीं आज इनकी जगह बाजार में मिलने वाले रंग बिरंगे पेय पदार्थों ने ले ली है। पहले भोजन ताजा बनता था, आज कई बार भोजन घंटों पहले बनाकर रखा जाता है या बाजार से तैयार खरीद लिया जाता है। इस बदलाव का प्रभाव सीधे हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि गर्मी का मौसम में वो अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आती हैं। तेज धूप, बढ़ता तापमान और पसीने के कारण शरीर को अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे समय में सही खान पान न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है श्रोता साथियों, बल्कि हमें ऊर्जावान और सक्रिय भी बनाए रखता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए श्रोता साथियों, हमें यह समझना होगा कि बदलती खान पान की आदतों के बीच हम अपने स्वास्थ्य का संतुलन कैसे बनाकर रखें और गर्मियों में हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि समय के साथ लोगों की भोजन संबंधी जो प्राथमिकता है वो बदल गई है। पहले जहां लोग घर के बने पौष्टिक भोजन को महत्व देती थी, वही आज भागदौड़ भरी जिंदगी में जल्दी तैयार होने वाले खान पान की मांग बढ़ा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज और अन्य जंक फूड युवा और बच्चों के लिए अत्यधिक लोकप्रिय हो चुके हैं। ये खान पान पदार्थ श्रोता साथियों, हमें स्वादिष्ट तो लगते हैं, लेकिन इसमें आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है।
1: बिल्कुल।
0: इसके कारण इनके अधिक सेवन से हमारा मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप और हृदय रोग जैसी समस्या होती है वो भी अंजलि जी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल मनीषा, गर्मी के दिनों में शरीर से पसीने के रूप में पानी और खनिज लवण बाहर निकलते रहते हैं। इसकी यदि पूर्ति समय पर नहीं की जाए तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिसके कारण चक्कर आना, सिर दर्द, कमजोरी, थकान, उल्टी, दस्त, लू लगना जैसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए गर्मियों में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि शरीर को सुरक्षित रखने का माध्यम भी माना जाता है। गर्मी के मौसम में हमें मौसमी फलों का अत्यधिक सेवन करना है, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, आम, पपीता। इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है और ये शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। इसी के साथ लौकी, तुरई, टिंडा, परवल और भिंडी जैसी सब्जियां गर्मियों में हल्की और पौष्टिक मानी जाती है।
0: जी हाँ।
1: इनका नियमित सेवन शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। दही और छाछ गर्मी के मौसम के सबसे अच्छे साथी हैं। ये पाचन सुधारते हैं, शरीर को ठंडक देते हैं, ऊर्जा बनाए रखते हैं।
0: जी हाँ।
1: गर्मी में दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहना भी बहुत जरूरी है। प्यास लगने का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसी के साथ श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे हमें नींबू पानी, बेल का शरबत, सत्तू का घोल, नारियल पानी और छाछ भी पीना है। ये शरीर को प्राकृतिक प्राकृतिक ऊर्जा प्रदान कर पाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही हम देखते हैं कि कई लोग काम या पढ़ाई के कारण घर से बाहर चले जाते हैं और नियमित रूप से बाहर का भोजन करते हैं। इससे श्रोता साथियों, भोजन की गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है और पोषक तत्वों की, जो हमारे शरीर में पोषक तत्व होते हैं, उनकी भी कमी होने लगती है।
1: जी
0: हाँ। कई लोग सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं अंजलि जी, और देर रात तक भोजन करते हैं या समय पर भोजन ही नहीं करते हैं। इससे पाचन तंत्र है वो भी प्रभावित होता है और हमारे शरीर की कार्य क्षमता है वो भी कम हो जाती है। साथ ही हम देखते हैं श्रोता साथियों कि गर्मी के मौसम में शरीर से पसीने अधिक निकलने के कारण हमारे शरीर में पानी और खनिज और लवण की जो क्षमता है और वो भी कम हो जाती है। ऐसे में शरीर को पर्याप्त पानी, विटामिन और खनिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि इस मौसम में उचित खान पान न अपनाया जाए अंजलि जी, तो शरीर में निर्जरीकरण, कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द और थकान जैसी समस्याएं वो भी बढ़ सकती है। इसीलिए गर्मियों में भोजन हल्का, संतुलित और पानी से भरा होना चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से आजकल हमारी खान पान की जो आदतें हैं वो बदल रही हैं और गर्मी के मौसम में हमें खान पान का कैसे ध्यान रखने की जरूरत है।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, गर्मी में हमें बहुत कम चीजें खानी चाहिए। हम देखते हैं कि ज्यादा तला भुना भोजन करने से हमारा पाचन तंत्र खराब होता है। हम देखते हैं मनीषा कि बहुत से लोग समोसा, कचौरी, पकौड़ी जैसे खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में खाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: पाचन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। बहुत अधिक मसाले शरीर में गर्मी बढ़ा सकते हैं और पेट की परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए ज्यादा मसालेदार भोजन हमें नहीं करना है। इसी के साथ दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक और अत्यधिक मीठे पेय पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना है। ये थोड़ी देर के लिए हमें ताजगी देते हैं लेकिन लंबे समय में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। गर्मी में भोजन जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए ताजा भोजन का हमें सेवन करना है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि आजकल बच्चे मोबाइल और टीवी के प्रभाव में आकर जंक फूड की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं।
1: जी हाँ।
0: माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को घर का पौष्टिक भोजन खाने की आदत डालें। यदि बचपन में अच्छी आदतें खान पान को लेकर विकसित हम बच्चों की कर देते हैं तो भविष्य में कई बीमारियों से बचा जा सकता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मनीषा, हम हमारे श्रोता साथियों को ये बात समझाना चाहेंगे कि एक गाँव में दो मित्र रहते थे, रमेश और सुरेश।
1: जी।
0: गर्मी का मौसम शुरू हुआ, रमेश रोज बाजार से कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खरीद कर खाता, वहीं सुरेश घर की छाछ, नींबू पानी और मौसमी फल खाता था। कुछ ही दिनों में रमेश के पेट दर्द, कमजोरी और थकान की शिकायत होने लगी। उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। दूसरी ओर सुरेश पूरे मौसम स्वस्थ और ऊर्जावान रहा।
1: जी?
0: जब रमेश ने कारण पूछा तो सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, शरीर को वही दो जिसकी उसे जरूरत है, केवल वह नहीं जो जीभ को अच्छा लगे।
1: बिल्कुल।
0: यह बात रमेश के मन में बैठ गई और उसने भी अपनी आदतों को बदल लिया। जिस तरीके से हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि बाजार की जो चीजें हैं वो हमें थोड़ी देर का आनंद जरूर देती हैं लेकिन हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा बिगाड़ देती हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए घर का बना भोजन ही हमें खाना चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि सही खान पान गर्मियों में हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखता है।
0: बिल्कुल।
1: यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाता है।
0: जी हाँ।
1: और शरीर में पर्याप्त ऊर्जा भी बनाए रखता है। श्रोता साथियों, संतुलित आहार लेने से व्यक्ति दिन भर तरोताजा महसूस करता है।
0: बिल्कुल।
1: और गर्मी से होने वाली परेशानियों से भी बच सकता है। यहीं अगर अंजलि जी हम बात करें कि गर्मियों में पर्याप्त पानी पीना हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो साथियों हम देखते हैं कि पानी जीवन का आधार है। गर्मियों में शरीर को सामान्य दिनों की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। श्रोता साथियों, अगर हम सही पानी पीते हैं और लगातार मतलब जितना हमें चाहिए उतना पानी पीते हैं तो इससे हमारे शरीर को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं।
0: जी जी।
1: जैसे कि हमारे शरीर का तापमान है वो भी नियंत्रित रहता है, शरीर में पानी की कमी नहीं होती है, हमारी पाचन क्रिया है वो भी बेहतर बनी रहती है, त्वचा संबंधी समस्या है वो नहीं होती है और शरीर में जो हमारे अंजलि जी विषैले पदार्थ हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं।
0: जी जी।
1: साथ ही हम देखते हैं कि विशेषज्ञों के अनुसार गर्मियों में दिन भर में पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए। प्यास लगने का इंतजार नहीं करना है श्रोता साथियों, बल्कि नियमित अंतराल में हमें पानी पीते रहना है।
0: जी हाँ बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। बदलती जीवन शैली के इस दौर में यह जरूरी है कि हम आधुनिकता को अपनाएं लेकिन अपनी पारंपरिक और स्वास्थ्यवर्धक खान पान की आदतों को न भूलें। गर्मी का मौसम हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के अनुसार जीवन जीना ही सबसे अच्छा रास्ता है। जब मौसम के अनुसार भोजन हम चुनते हैं, पर्याप्त पानी पीते हैं, ताजा और संतुलित आहार लेते हैं, तब जंक फूड से दूरी बना पाते हैं, तब हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी प्रसन्न रहता है। याद रखिए दोस्तों कि अच्छी सेहत किसी दवा की दुकान से नहीं खरीदी जा सकती, यह रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनती है। इसलिए आज संकल्प लीजिए कि अपने परिवार और बच्चों को स्वस्थ खान पान की ओर प्रेरित करेंगे, स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को अपनाएंगे और गर्मी के मौसम में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। इस तरीके से अगर बहुत सारी चीजें हम अपने मन में ठान लेते हैं तो अपने स्वास्थ्य की देखभाल हम अच्छे से कर पाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, हम देखते हैं कि गर्मियों में हरी पत्तेदार और ताजी सब्जियों का सेवन भी हमें करना चाहिए। इसमें विटामिन, खनिज और फाइबर होते हैं वो प्रचुर मात्रा में होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लौकी, तोरई, टिंडा, परवल और पालक जैसी सब्जियां हैं वो शरीर के लिए लाभकारी होती हैं। श्रोता साथियों, ये सब्जियां पचाने में आसान होती हैं और शरीर को आवश्यक पोषक तत्व है वो भी प्रदान करती हैं। जैसे कि श्रोता साथियों, अगर हम हल्का और संतुलित भोजन करते हैं तो हमें इससे कई प्रकार के लाभ मिलते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि हमारा शरीर है वो भी स्वस्थ रहता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी सही बनी रहती है, और हमारा दिमाग और शरीर है वो भी अच्छी तरीके से काम करता है। गर्मियों के मौसम में भारी और तेलीय भोजन से श्रोता साथियों हमें बचना है। हमें भोजन में शामिल करना है जैसे कि दालें, हरी सब्जियां, सलाद, दही, फल, साबुत अनाज। हल्का भोजन पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है अंजलि जी, और हमारे पाचन तंत्र पर जो दबाव होता है उसे भी कम करता है, और हमारे शरीर को भी साथ ही सक्रिय बनाए रखता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि हमें वो जो पसंद है वो नहीं खाना चाहिए, हमें वो खाना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। कहते हैं कि इंसान जैसा खाता है वैसा ही बनता है।
1: बिल्कुल,
0: भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य, सोच, ऊर्जा और जीवन शैली का आधार है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमारे खान पान की थाली बहुत तेजी से बदलती जा रही है।
1: जी हाँ,
0: घर के चूल्हे पर बनने वाले सादे भोजन की जगह अब बाजार के चमत्कार और आकर्षक खाद्य पदार्थ लेते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: गर्मी के मौसम में यह बदलाव और भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि इस मौसम में मनीषा शरीर की जरूरतें बदल जाती हैं, लेकिन हमारी खाने की आदतें अक्सर बदलती हैं। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि स्वास्थ्य समस्याएं का निमंत्रण जो है वो हम स्वयं खुद दे देते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी थाली को हमें बदलने की जरूरत है। यदि हम अपने दादा दादी या नाना नानी के समय की बात करें तो भोजन का सीधा संबंध मौसम और मेहनत से था।
1: जी हाँ,
0: सर्दी में बाजरे की रोटी, गुड़ और तिल खाते थे, बरसात में पाचन को ध्यान में रखते हुए भोजन खाते थे, गर्मी में छाछ, सत्तू, खीरा, हल्का भोजन करते थे। आज स्थिति कुछ अलग है। अब मौसम चाहे कोई भी हो, भोजन लगभग एक जैसा ही रहता है। पैकेट बंद चीजें, बाजार के पेय पदार्थ और जल्दी तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। समस्या केवल भोजन बदलने की नहीं है मनीषा, बल्कि यह सोचने की है कि हमारे शरीर से कितनी सारी चीजें जो है वो बाहर निकल रही है और विषाक्त जो पदार्थ है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के युवाओं में फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक का चयन है वो बढ़ रहा है। गर्मियों में यह आदत स्वास्थ्य के लिए श्रोता साथियों हानिकारक हो सकती है, इसीलिए अंजलि जी बच्चों और युवाओं को चाहिए कि वे पर्याप्त पानी पिए, मौसमी फलों का सेवन करें और घर का खान पान है उसी ही अपनाएं, अत्यधिक जंक फूड से बचें। साथ ही श्रोता साथियों खेल कूद के दौरान पानी और पौष्टिक पेय आप पिए। साथ ही अंजलि जी, यही अगर हम बात करें कि खान पान और स्वास्थ्य का क्या संबंध है, तो हम देखते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए केवल पेट भरना पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि पौष्टिक भोजन लेना भी श्रोता साथियों हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। सही खान पान व्यक्ति की कार्य क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करता है। जो लोग संतुलित भोजन करते हैं वे अंजलि जी हम देखते हैं कि अधिक ऊर्जावान रहते हैं और बीमारियों का सामना भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है हमारी, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थे बदलती खान पान की आदतें और गर्मियों में सही खान पान का ध्यान हम कैसे रखें।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि मानव जीवन में भोजन का स्थान केवल भूख मिटाने तक सीमित नहीं है। भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देने, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने, मानसिक संतुलन बनाए रखने और दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वर्तमान समय में तेजी से बदलते जीवन शैली ने खान पान की आदतों को प्रभावित किया है। पहले जहां लोग स्थानीय ताजा मौसम के अनुरूप भोजन को प्राथमिकता देते थे, वहीं आज के समय में हम देखते हैं कि तैयार खाद्य पदार्थों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी और स्वाद प्रदान जो विकल्प है उनकी ओर ज्यादा उनका सुझाव बढ़ रहा है। इसका प्रभाव हर आयु वर्ग में दिखाई दे रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि गर्मी का मौसम शरीर के लिए एक विशेष सुरक्षा की तरह होता है। बढ़ते तापमान के कारण शरीर को अधिक ऊर्जा, पर्याप्त तरल पदार्थ और संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल,
0: यदि इस मौसम में श्रोता साथियों खान पान की अपेक्षा की जाए तो अनेक स्वास्थ्य समस्याएं जन्म ले लेती हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि बदलती खान पान की आदतों के बीच हम संतुलन बनाकर कैसे रख सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आज हर व्यक्ति समय बचाना चाहता है, यही कारण है कि तैयार भोजन और फास्ट फूड लोकप्रिय होते जा रहे हैं। लेकिन सुविधा की यह आदत जो है वो धीरे धीरे शरीर को कमजोर बना सकती है। जब भोजन में प्राकृतिक तत्व कम और कृत्रिम चीजें अधिक हो जाती है तब शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। हमारे पूर्वजों के पास आधुनिक जिम नहीं थे, महंगे सप्लीमेंट नहीं थे, लेकिन उनका भोजन प्राकृतिक था। यही कारण था कि वे लंबे समय तक सक्रिय और स्वस्थ रहते थे। आज हमारे पास सुविधाएं अधिक हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। श्रोता साथियों, गर्मी का मौसम केवल तापमान बढ़ने का नहीं, यह वह समय है जब शरीर लगातार स्वयं को संतुलित रखने की कोशिश करता है। तेज धूप, गर्म हवाएं और अत्यधिक पसीना शरीर से पानी के साथ साथ जरूरी खनिज भी बाहर निकाल देते हैं। यदि इस समय सही भोजन न किया जाए तो शरीर थकने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि कमजोरी काम की वजह से है, जबकि असल कारण शरीर में पानी और पोषक तत्वों की कमी हो सकती है।
0: जी हाँ,
1: गर्मी में शरीर को हल्के, ताजे और पानी से भरपूर भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए गर्मी में अक्सर लोग ठंडक पाने के लिए जो भी ठंडा मिल जाए, दिख जाए, वो खा लेते हैं, पी लेते हैं।
0: जी हाँ,
1: लेकिन हर ठंडी चीज श्रोता साथियों स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। बर्फ से भरे मीठे पेय पदार्थ कुछ समय के लिए राहत देते हैं मनीषा, लेकिन कई बार शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके विपरीत मटके का पानी, छाछ, नींबू पानी, सत्तू और नारियल पानी शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडक देते हैं। प्राकृतिक पेय केवल प्यास नहीं बुझाते बल्कि शरीर को भी संतुलित रखते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि तकनीक के विकास ने जीवन को हमारे वो सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां हमारे सामने आई हैं। पहले भोजन तैयार करने और खाना निश्चित करने के लिए हमारे पास समय होता था, परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता था। आज व्यस्त दिनचर्या के कारण लोग जल्दबाजी में खाना खा लेते हैं या कई बार भोजन को समय पर नहीं खाते और छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से भोजन है वो घर पहुंचाने लगा है। इससे सुविधाएं तो तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन श्रोता साथियों लोगों की रसोई और पारंपरिक व्यंजनों से दूरी बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे ऐसे खाद्य पदार्थों का प्रयोग बढ़ रहा है जिसमें स्वाद अधिक और पौष्टिक पोषण होता है वो कम होता जा रहा है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि आधुनिक उपभोक्ता संस्कृति को भोजन को मनोरंजन और आकर्षण का साधन बना दिया है। रंग बिरंगे पेय पदार्थ, आकर्षक पैकेजिंग और विज्ञापन लोगों को प्रभावित करते हैं। विशेषकर बच्चों और युवा इसमें जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। स्वाद के पीछे भागते भागते कई बार हम देखते हैं कि लोग अपने खान पान और सही पोषक तत्वों को भूल ही जाते हैं। उनके शरीर में कहीं पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। श्रोता साथियों, यही कारण है कि भोजन की मात्रा बढ़ाने के बावजूद पोषक तत्वों की हमारे शरीर में कमी होती है और हमारी जो स्वास्थ्य जैसी समस्याएं होती है वो लगातार बढ़ती रहती हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आज बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौती भोजन नहीं बल्कि भोजन का चुनाव है। रंगीन पैकेट, आकर्षक विज्ञापन और मोबाइल पर दिखने वाले खाद्य पदार्थ बच्चों को जल्दी आकर्षित कर लेते हैं। धीरे धीरे घर का भोजन उन्हें कम पसंद आने लगता है। यहीं पर परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों की यदि बच्चे परिवार के साथ

0: बैठकर भोजन करेंगे, फल और सब्जियों के महत्व को समझेंगे तो उनमें अच्छी आदतें विकसित होंगी।
1: बिल्कुल,
0: स्वस्थ बचपन ही स्वस्थ भविष्य की नींव है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारा भोजन केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को प्रभावित करता है।
1: बिल्कुल,
0: असंतुलित भोजन से चिड़चिड़ापन, थकान और एकाग्रता की कमी हो सकती है। वहीं संतुलित भोजन ऊर्जा, सकारात्मक सोच और कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए भोजन को केवल स्वास्थ्य का विषय, स्वाद का विषय नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा समझना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ भोजन की कमी नहीं है लेकिन सही भोजन की समझ की कमी जरूर दिखाई देने लगी है। हमारी थाली पहले से अधिक भरी हुई है लेकिन कई बार उसमें पोषण कम और दिखावा ज्यादा होता है। हम स्वाद के पीछे भागते भागते ये भूलते जा रहे हैं मनीषा कि शरीर को केवल स्वाद नहीं संतुलन भी चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर हम बात करें कि गर्मियों में हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है तो हम देखते हैं कि गर्मी का मौसम शरीर को प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित करता है। अत्यधिक तापमान के कारण शरीर लगातार स्वयं को ठंडा रखने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में अगर पसीना निकलता जाए और शरीर में पानी की कमी होती जाए तो हमारा शरीर कमजोर हो सकता है। यदि इसकी पूर्ति समय पर न हो श्रोता साथियों तो हमारे शरीर में हमें थकान महसूस होने लगती है, काम करने की क्षमता है वो हमारी घट जाती है, ध्यान केंद्रित करने में भी हमें कठिनाइयां आने लगती है। इसलिए श्रोता साथियों इस मौसम में भोजन का चयन है वो हमें सोच समझ कर करना है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि हर क्षेत्र की जलवायु के अनुसार वहाँ के पारंपरिक खाद्य पदार्थों पर विकसित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हम देखते हैं कि ऐसे खाद्य पदार्थ उपयोग किए जाते हैं जो उन्हें गर्मी से राहत दिलाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: स्थानीय अनाज, मोटे अनाज, मौसमी सब्जियां, क्षेत्रीय पेय पदार्थ न केवल सस्ते होते हैं साथियों बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयोगी होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इनका सेवन पर्यावरणीय और स्थानीय किसानों के लिए भी लाभकारी होता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम ये जान पा रहे हैं कि हमें हमारे जीवन शैली में बदलाव कैसे करने की जरूरत है और किस तरीके से स्वस्थ आदतों को हमें अपनाना होगा। बातें निरंतर आगे कार्यक्रम में और भी यूं ही बनी रहेंगी लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जान ही लिया है, यही कहना चाहेंगे कि गर्मी का मौसम हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि प्रकृति के साथ चलिए, उसके विरुद्ध नहीं। जब मौसम गर्म हो तो हल्का भोजन हो, जब शरीर को पानी की जरूरत हो तो उसे पर्याप्त पानी मिले, जब पसीने से खनिज बाहर निकले तो उसकी भरपाई भी हो, यही स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है।
1: बिल्कुल,
0: हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि स्वास्थ्य किसी फैशन का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन की आवश्यकता है। उन्हें यह समझना होगा कि घर की रसोई में बना साधारण भोजन भी कई बार बाजार की महंगी चीजों से अधिक लाभदायक होता है। आज एक छोटा सा संकल्प लें श्रोता साथियों हम, कि हम अपनी थाली में स्थानीय, मौसमी और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को जगह देंगे।
1: बिल्कुल,
0: हम अपने परिवार को स्वस्थ भोजन की ओर प्रेरित करेंगे। हम गर्मी के मौसम में शरीर की जरूरतों को समझेंगे और अपने खान पान को उसी के अनुसार ढालेंगे। याद रखिए कि अच्छी आदतें धीरे धीरे बनती हैं, लेकिन उनका लाभ जीवन भर मिलता है। स्वस्थ शरीर, प्रसन्न मन और ऊर्जावान जीवन की शुरुआत हमारी थाली से ही शुरू होती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हमें स्वस्थ रहना है, खुश रहना है और हमारे खान पान में अलग अलग मौसमी अनुसार जो फल फ्रूट होते हैं उन्हें हमें शामिल करना है ताकि हम स्वस्थ रह पाए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर हम बात करें कि पर्यावरण और खान पान का संबंध क्या होता है, तो हम देखते हैं कि भोजन, हमारा भोजन है वो केवल हमारे स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि पर्यावरण के प्रति भी प्रभावित होता है। स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का उपयोग करने से परिवहन और भंडारण में लगने वाली ऊर्जा है वो कम हो जाती है। इस प्रकार श्रोता साथियों, स्वस्थ खान पान पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकता है।
0: जी जी।
1: भोजन का चुनाव करते समय हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि बदलती खान पान की आदतें आधुनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन परिवर्तनों के बीच स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। गर्मियों में शरीर की जरूरतों को समझकर भोजन का चयन करना, स्वच्छता का पालन करना, स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को अपनाना, संतुलित जीवन शैली को बनाए रखना हमारे लिए श्रोता साथियों बहुत जरूरी है, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, हमें ऊर्जा मिलती है और हमारी मानसिक शक्ति है वो भी बनी रहती है।
0: बिल्कुल मनीषा, आज आवश्यकता इस बात की नहीं कि हम बहुत महंगा और विशेष भोजन खोजें, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आसपास उपलब्ध भोजन को पहचाने।
1: बिल्कुल,
0: हमारी रसोई, हमारे खेत और हमारे स्थानीय बाजार ऐसी अनेक चीजों से भरे हैं जो शरीर को ताकत, मन और संतुलन और जीवन को ऊर्जा दे सकते हैं। भोजन को केवल स्वाद का साधन नहीं बल्कि स्वास्थ्य का साथी माने। अपनी थाली में रंग बिरंगे पैकेटों से नहीं बल्कि प्रकृति के रंगों से उसे सजाए, ऐसा भोजन चुने जो शरीर को शक्ति दे, मन को संतुष्टि दे और जीवन को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखें। जीवन की असली समृद्धि धन दौलत से नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य से पहचानी जाती है।
1: जी हाँ।
0: और अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत किसी अस्पताल से नहीं बल्कि हमारी अपनी रसोई और हमारी अपनी थाली से होती है। इसी सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवन के संदेश के साथ अब हम कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से विदा लेना चाहेंगे।
1: जी हाँ।
0: और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: जी हाँ।
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की, आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को
1: नमस्कार। साथी दोस्तों, आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।
0: जी।

कशिश पाराशर। और स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों हम रोज़ाना कार्यक्रम आपकी फरमाइश को लेकर हाजिर हो जाते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से आपका और हमारा सिलसिला बना रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच श्रोता साथियों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपने फरमाइश की गीत सुनना चाहते हैं हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है साथियों, आपको लिखना है व्हाट्सएप SMS पर फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहाँ से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहाँ का आपको नाम लिखना है और साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। तो दोस्तों जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी फरमाइशें आ चुकी हैं, फरमाइश का सिलसिला शुरू हो चुका है दोस्तों, इसी बीच में बढ़ना चाहूंगी हमारी पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आई है मुजफ्फरपुर बिहार से। फिल्म का नाम है बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। गीत के बोल भी यही है श्रोता साथियों। इस गीत को आवाज़ दी है सुरेश वाडकर और साधना सरगम जी ने। फरमाइशकर्ता मुजफ्फरपुर बिहार से हैं आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार जी। इसी बीच साथी हैं जो जुड़ रहे हैं, नाम बताना चाहूंगी, उमेरखेड़ महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं अभिजीत गमहाड़कर, राही सरिता गमहाड़कर, एकांश गमहाड़कर। मुंबई से हैं प्रणीता, सिद्धांत गमहाड़कर, अर्जुना गमहाड़कर, टुक टुक जी। नागपुर से वैशाली शैलेश गमहाड़कर, सुमित गमहाड़कर, ध्वनि गमहाड़कर, परी जी। पंडापुर से जुड़ना चाह रहे हैं जाखिल मुलाणी, सुबिया सुबान, सलमा, मुमताज, समीर जी, दिलशाद मुलाणी, नसीर मुलाणी जी और समस्त मुलाणी परिवार सदस्यगण। पंडरपुर सिटी से हैं प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशा सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। मस्तानपुरा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत। इसी बीच हमारे और भी दोस्त जुड़ रहे हैं बागपत से आसिफ अली खान, मोमिना नास, मुस्कान, आसिफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान। मोहाली पंजाब से हैं बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। और भी हमारे दोस्त इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, नाम बताना चाहूंगी साथियों, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, प्रशांत सिंधे, कृष्णा घोड़के जी, रोहिदास चौक पंडरपुर शहर से हैं ये। खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, सीमा वर्मा, भागवत, अभिषेक वर्मा, अमित वर्मा, सचिन राज, समर राज, आर्यन और रिही, ऐशिका वर्मा जी, श्वेता वर्मा जी। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं बोल राधा बोल तूने ये क्या किया।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, फिल्म का नाम है दीवाना, गीत के बोल हैं पाई अलिया ओ हो हो। फरमाइश करते हैं इस गीत के साथ जुड़ रहे खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, समनराज आर्यन और ही ईशिका श्वेता वर्मा जी। बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीर्वाद चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल रचिता खुराना जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं जो पसंद करते हैं इसी गीत को। आपको नाम बताना चाहूंगी श्रोता साथियों, साई शिरडी से सुरेश मालोड़े, वर्षा मालोड़े, श्रद्धा मालोड़े, मानसी मालोड़े जी। नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भागरे, सुनैना सुकन्या और सविता भागरे जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं पाई अलिया ओ हो हो हो। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से हम बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। जैसा कि फरमाइश का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है, प्यारे प्यारे गीतों की फरमाइश कार्यक्रम के माध्यम से आई है साथियों, इसी बीच अगली फरमाइश आई है मजनू का टिल्ला से। फिल्म का नाम है आपको बताना चाहूँगी नसीब। गीत के बोल हैं मेरे नसीब में तू है कि नहीं। इस प्यारे से गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं निपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि जी शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन जी शाह, राजेंद्र शाह, सुषमा कपूर जी। कोका भिलाई से जुड़ना चाह रहे हैं उत्तम सिंह झंगेल, मोरर झंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष झंगेल, नंदनी झंगेल, अमित झंगेल, शकुन, आरुषि, उषिका, आदित्य, अंजलि झंगेल। गंज द्वारा से जुड़ना चाह रहे हैं शमशुल कमर राय, शाइन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं जुड़ रहे हैं निमानाबाद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमरजीत कौर जी। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं मेरे नसीब में तू है कि नहीं।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, इसी प्यारे से फरमाइश के गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत है लखनपुर छत्तीसगढ़ से आया है। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों लगान। गीत के बोल हैं घनन घनन बरसे। आपको बताना चाहूँगी, लखनपुर छत्तीसगढ़ से फरमाइश करता जुड़ रहे विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और भी दोस्त इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आपको बताना चाहूँगी, दोस्तों जुड़ रहे हैं हमारे बीच में श्रोता साथी कश्मीर से हैं फैराज, मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, कासिरुद्दीन और भी श्रोता साथी गंजुडवारा से हैं, शमशुल कमर राही, शाइन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनुअंसारी, कलीमंसारी जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं, बलकर्ण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति, प्रहलाद वर्मा, खूबचंद्र वर्मा जी। तो आइए साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं घनन घन बरखे बरसा। इस प्यारे से गीत को आवाज़ दी AR रहमान जी ने। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और मनोरंजन कीजिए आपके द्वारा भेजे गए फरमाइश गीतों का।

इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी गोस्वामी जी और दिशा गोस्वामी जी, रघुवीर नगर से हैं दिलावर खान हसीना बानो एलियाज नायब और लड्डू जी, बोरखेड़ा पित्रा मल से जुड़ना चाह रहे हैं विनोद मुड़त नेहा जैन दीपक मयंक मुड़त चेतन नाटा दिलीप सिंह पंवार जी दीक्षा कुश मुड़त जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जहां मैं जाती हूं वहां चले आते हो।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है पोटा कला दुर्ग से। फिल्म का नाम है देवदास, गीत के बोल है डोला रे डोला। फरमाइश करता जुड़नाचार्य संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। इसी बीच हमारे और भी दोस्त जुड़ रहे हैं मलकापुर महाराष्ट्र से, शत्रुघ्न धाड़े वकील।

धार्मिक धाड़े, नीनाजी धाड़े, सपिल धाड़े, अजय खिरोडकर। लगान पंडित जी छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मिणी बघेल, साहिल भारती बघेल। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। और भी दोस्त किशोर नगरा अमरावती से हैं, हीरामन शेंडे, शीला देवी शेंडे, सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना ताई गुणाने जी। बीर शहर से विकास बंसोड़ा, रेखा बंसोड़ा, अदिति बंसोड़ा, वैभव शिंदे जी। कुम्भार गली कोलगांव से हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश और पांडुरंग कुम्हार जी। बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आश्चर्य, चेतन मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता खुराना जी। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज बदन सारे, गुलाम शाबी राही, महराज जहां। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव गांव से हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। नरवेल महाराष्ट्र से हैं पी एस नवाड़कर, नीमा नवाटकर, विशाल नवाकर, सोपान ताईडी जी। मलकापुर से नारायण इंगले, आशीष मुहेरकर। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं डोला रे डोला।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है गंजुटवारा से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। गीत के बोल है पास वो आने लगे जरा जरा। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद यासिन हाशमी, बेगम हाशमी, तौशिफ हाशमी, तैमूर करीम अंसारी जी। सहारनपुर से हैं जॉन डिकेस्टो, जी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी। इसी बीच हमारे और भी साथी हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। नाम बता दूं साथियों, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान, डुक्कू जी। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मण मल्होत्रा, लाडूगोल मल्होत्रा, ननकचल मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कुनिका डुक्कू सिक्का, भाविका सिक्का। और भी श्रोता साथी मधुबनी से जुड़ना चाह रहे हैं राजेंद्र कृष्णा, मदन मोहन। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, जस्मिन प्रयागराज भट्ट। पथरोड से विजय अंबाड़कर, सुनीता अक्षय, राधिका ऋषिकेश अंबाड़कर जी। नरसिंहगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कितिका, रमेश चंद्र टांगी जी। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। और भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा। जुड़ना चाह रहे हैं हरियाणा से हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा सार्थक, सचिन, यश वशिष्ठ जी। और भी साथी जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ मदनपुर से हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। और भी दोस्त इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों, राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं जो पसंद करते हैं इसी गीत को। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, हैप्पी आनंद, पीयूष कुमार जी। इसी बीच हमारे और भी साथी हैं जो पसंद करते हैं इसी गीत को। राजस्थान से हैं रमेश चुन्ने चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी जी। मुगलपुर से हैं जुड़ना चाह रहे अब्दुल सत्तार अब्बासी, अब्दुल अकबर अब्बासी। श्रीगंगानगर से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अशिर विपुल कामड़े जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं दोस्तों। गिरडीह झारखंड से हैं मोहम्मद यासिन अनजान, सामा नवाज, असन नवाज, बाबू एट, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया जी। अकोला से हैं अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश इंगले, अधीरा इंगले और राजवी और समस्त इंगले परिवार सदस्यगण। पटापरा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू। तो आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल है पास वो आने लगे जरा जरा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि साथियों बहुत ही प्यारा सा गीत चल रहा था, गीत के बोल थे वो पास आने लगे। इससे पहले हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर आप लोगों के साथ जुड़ी हुई थी और फरमाइश का कार्यक्रम चल रहा था। तो श्रोता साथियों 12 बज चुकी है, कार्यक्रम की फरमाइश के गीतों को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फिल्म का नाम है संगम, गीत के बोल है हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। इस गाने को सुनना चाह रहे हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बीबी करवी, हिमाक्ष। अनुरोध किया इस गीत को रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान, सदर बाजार मारवाड़ बिलारा राजस्थान से, और भी दोस्त हैं जो इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं। गंस डुडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा पायगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासिन हाशमी, शमशुल कमर राही, और भी दोस्त हैं जो इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं। दोस्तों एकता कॉलोनी रोहतक से है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट। अनुरोध किया है गंस डुडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिलो परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाज शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा रामदेव। तो आइए दोस्तों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। गीत के बोल है हर दिल जो प्यार करेगा। आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और मुकेश जी ने। तो आप बने रहें कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपने साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: Go ahead.
1: Again, I don't be dancing.
2: No, really bad.

साथियों, अगली फरमाइश हमारे पास आई है, गीत के बोल है, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। फिल्म का नाम है दीवाना। सुना चाह रहे इस गीत को लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। ऊपरकोट मोहला चौखुनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सारे सदस्य, डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू, ये हैं पटेल नगर मालोद से। और भी दोस्त हैं दोस्तों जो इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, ट्वेंशी खेड़ा। अनुरोध करता है दोस्तों, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघी, महेश संघी, प्रज्ञेश संघी, प्रीतेश संघी और पूरा संघी परिवार। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू प्रदेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, गीत के बोल हैं, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा।

साथियों, गीत से पहले बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। अगली फरमाइश हमारे पास आई है, फिल्म का नाम है बॉर्डर 2, गीत की बोल है मिट्टी के बेटे। सुना चाह रहे इस गीत को गंज टुटवारा गणेशपुर से फिरासत हुसैन अलकमर जहां शिफा सिमरन मोहम्मद अल्फीज शिवाशिक। अनुरोध किया इस गीत को धनुरी तिलीवारा से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया अयान बाबू, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर, उत्तर प्रदेश से हैं ये। और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महतरे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय टूल, पीबी कुलथे। और भी दोस्त हैं, रवि कुमार राहुल, रंजित कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकृत, गुरशब्द सिंह राहुल। ये है कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से। फरमाइशों का सिलसिला चल रहा है श्रोता साथियों। अगली फरमाइश इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं, अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाओ गवैया मल्होत्रा, भाई सच्चा सी है पाठक। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, गीत के बोल हैं मिट्टी के बेटे।

0: साथियों, बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, बॉर्डर टू का गीत था मिट्टी के बेटे, आवाज दी थी सोनू निगम साहब ने। अगली फरमाइश हमारे पास आई है, गीत की बोल है तू है तू दिल धड़कता है। सुना चाह रहे इस गीत को अजित कसाना, माया देवी रितिका और आदित्य कसाना, ग्राम व पोस्ट लदावली जिला मुरादाबाद से। इसी गीत के साथ जुड़ रहे नासिर रशीक, नाजिर नासिर, शाजिद शाहिद, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मुजावर, मिखाइल मुजावर, जन्म मुजावर। फरमाइश करता है सुंगा मगर मगर रोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देवी करानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार। सुना जा रहे इस गीत को कॉल सिटी बरकाना से हैं अफजल ताज, शाहिना सुल्तान, सोनू तस्नीम, कमल कुमार, मोहम्मद अफजल मलिक। अनुरोध किया इस गीत को श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से हैं ये। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, गीत की बोल है तू है तो दिल धड़कता है।
1: कौन सी फिल्म?

साथियों अगली फरमाइश हमारे पास आई है, गीत के बोल हैं चल तेरे इश्क में, फिल्म का नाम है गदर 2। सुना जा रहे इस गीत को हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। अनुरोध किया इस गीत को गांव कुम्हारहेड़ा को सरहानपुर से है सैयद मसरू, शैना हसन अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम, अदीप और भी दोस्त हैं दोस्तों जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, यह पलारी छत्तीसगढ़ से। तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मीखा मस्किन, बिहारी कॉलोनी दिल्ली से है, चंडीगढ़ से है राहुल खुराना, रचिता खुराना, किशु रिधाना खुराना और भी दोस्त हैं जो इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों। छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण से ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल से ठाकुर, ईश्वर से ठाकुर, मानू शानू, बबन मनु, कान्हा ठाकुर और हरिप्रिया। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, गीत के बोल हैं चल तेरे इश्क में।

साथियों, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। गीत के बोल हैं, आके भर लो बाजुओं में। सुना जा रहे हैं इस गीत को आर्ट श्री रामपुर सहडी अशोक कुमार, अविका जीविका सानू कुमार, अर्चना कुमार कोयते बस्ती पुनावले से हैं, अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, शाइशा सोनवने। अनुरोध करता है दोस्तों इस गीत के किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंट, शिला देवी शेंट, सिद्धार्थ गुणा ने। और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं, शेख हबीब, छोटू भाई शेख, साजन बेगम, फिजान शेख, शाहरुख शेख, वसीम शेख, अफसाना शेख, अश्मीरा शेख, इरफान शेख, जिन्नत शेख, फरहान शेख, अब्दुल्ला लोहेवाला, साजिद शेख, मोहम्मद आमिर अंसारी, माहिर नूर अंसारी, शमीम अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी, करेली जिला बरेली से हैं ये। सुना जा रहे इस गीत को भवानी नगर पैठन से अरुण धोंगड़े, आरती धोंगड़े, भाऊ साहेब धोंगड़े, गंगा सागर धोंगड़े, हर्षवर्धन अशोक धोंगड़े, राशि कार्तिक परी धोंगड़े, ये है भवानी नगर पैठन से। सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गले श्री रामपुर से है, अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, सानिका दले, पुनावले पुणे से है, अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल है आके भर लो बाजुओं में, फिल्म का नाम है लकी। तो आप बने रहे श्रोता साथियों वागर रेडियो 90.8 FM पर, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपने साथी जागृति भट्ट के साथ में।

श्रोताओं, अभी हमने गीत सुना। गीत के बोल थे आंखें भर लो बाजू में, फिल्म का नाम था लकी। यही अगली फरमाइश हमारे पास आई है। गीत के बोल हैं तड़प तड़प के इस दिल में, फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम। सुनना चाह रहे हैं इस गीत को जलालाबाद वेस्ट से सुरेश ककनेचा, पूनम ककनेचा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा। अनुरोध किया इस गीत को मलियाना सरत्ना मैरिट से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन और भी दोस्त हैं श्रोता साथी जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत शिवाजी, श्रीमती करुणा शिवाजी, आयुष शिवाजी, विवेक शिवाजी, बेबी आयुषी शिवास, मॉडल टाउन करनाल से हैं सुधीर नूतन, संदीप कुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, सुहानी शर्मा, पंकज शर्मा, रोहित शर्मा, रेशमा गोदारा, सुनीता शर्मा, सुनीता जैन, सुनीता ढिल्लू। इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं श्रोता साथियों भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, ये फाजिल का पंजाब से अनुरोध करता है इस गीत के। छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण से ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल से ठाकुर, ईश्वर से ठाकुर, मानु शानु, बब्बन मनु कर मनु कान्हा ठाकुर और हरिप्रिया। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

साथियों अगली फरमाइश है, फिल्म का नाम है आखिरी रास्ता, गीत की बोल है गोरी का साजन साजन की गोरी। सुनना चाह रहे इस गीत को मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी। इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं जिला नांदेड़ येतला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल और भी दोस्त हैं श्रोता साथियों जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवीद इरशाद, अजरा तबस्सुम मदरसा गीत भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से हैं, रायपुर अनी जिला बनारस से हैं, मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरिन अंसारी, आफिया परवीन। पसंद किया इस गीत को गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी, डॉक्टर वामी बीबी वामिका एंड वाणी थांदी। ये है टोरोवाल नवाशहर पंजाब से। बाबा साहेब वाड़ों दे पंकाचार्या प्रियंका सोनू चरपे, ये है पुणे से और इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। पीपरवाड़ा पालजुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर, वंशिका दिवाकर। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं गोरी का साजन साजन की गोरी, फिल्म का नाम है आखिरी रास्ता।

साथियों अगली फरमाइश हमारे पास आई गीत की बोल है, हम तो तेरे आशिक है, सदियों पुराने फिल्म का नाम है फर्ज। आवाज से इस गीत को मुकेश जी ने सुना जा रहे हैं। इस गीत को हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा नामदेव, छनुला श्रीवास, रजन साहू, यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ से अनुरोध किया है इस गीत को अब्दुल सत्तार अब्बास ने। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं, हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने।

श्रोता साथियों, यही हमारे कार्यक्रम का आज का अंतिम गीत था। अब आज के कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपनी राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नई फरमाइशों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम आपकी फरमाइश से जाने की अनुमति। नमस्कार।

साथियों, ये थी हमारी आज की सभा जो कि अब यही समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज की शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को बुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे, मीठी यादें, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसी के आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं दोस्तों, इसी के बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, कार्यक्रम समस्या समाधान, जिसमें आप सभी जानेंगे श्रोता साथियों नई नई समस्याओं और उनसे जुड़े समाधानों के बारे में। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट, जिसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी के बाद दोस्तों, अगला कार्यक्रम होगा मनोरंजक गीत कार्यक्रम। यह है साथियों पुराने और नए गीतों का ऐसा खूबसूरत संगम, जो आपके दिल को छू जाएगा और शाम को और भी यादगार बना देगा। और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़ियां सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागड़ रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रमाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते। पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा।
1: जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है।
0: प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है, और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कशिश कि सीखने से बेहतर सृजन करना सीखना होगा।
0: जी जी।
1: यानी कि श्रोताओं, मनुष्य का जीवन केवल ज्ञान इकट्ठा करने के लिए नहीं बना है, बल्कि उस ज्ञान से कुछ नया रचने के लिए बना है। आज के समय में हर व्यक्ति सीखने में लगा हुआ है, कोई किताबों से सीख रहा है, कोई इंटरनेट से, तो कोई अनुभव से। लेकिन श्रोताओं, केवल सीखते रहना ही सफलता नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब हम सीखी हुई बातों का उपयोग करके कुछ नया सृजन करते हैं।
0: जी
1: सीखना
0: हाँ।
1: आवश्यक है, लेकिन उससे भी जरूरी है श्रोता साथियों सृजन करना।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें होंगी। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना दस्तूर है कार्यक्रम का, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वाग रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि सीखने से बेहतर सृजन करना हमें सीखना होगा। जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले भी हमारे युवा साथियों को यह बताया कि सीखना जीवन का आधार होता है।
1: बिल्कुल।
0: जो व्यक्ति श्रोता साथियों सीखना छोड़ देता है, वह आगे बढ़ना भी छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि केवल सीखते रहना ही काफी है? नहीं है साथियों। असली बदलाव तब आता है जब हम सीखी हुई बातों से कुछ नया बनाना शुरू करें।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि केवल जानकारी इकट्ठा करना ही नहीं, बल्कि उस जानकारी को उपयोग में लाकर समाज, परिवार और अपने जीवन के लिए कुछ नया तैयार करना ही सच्चा विकास होता है। जागृति जी,
1: जी हाँ,
0: जैसा कि आपने बताया है कि आज के युवा साथी मोबाइल और तकनीक के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे हैं। हर दिन श्रोता साथियों हजारों वीडियो, किताबें और जानकारियां हमारे सामने हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम केवल सीख रहे हैं या कुछ नया भी बन रहे हैं?
1: बिल्कुल।
0: क्या हम सिर्फ दूसरों की सफलता की कहानियां ही सुन रहे हैं साथियों, या फिर अपनी कहानी लिखने की कोशिश भी कर रहे हैं?
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि आज दुनिया में वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जो केवल नकल नहीं करते बल्कि अपनी सोच से नया रास्ता बनाते हैं। अगर हर व्यक्ति केवल दूसरों को देखकर सीखता रहता और कुछ नया बनाने की कोशिश नहीं करता तो आज विज्ञान, कला, तकनीक और समाज इतने आगे नहीं बढ़ पाते।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, हम कह सकते हैं कि सृजन ही प्रगति का आधार है। कहा भी गया है कि सीखो जरूर लेकिन अपनी पहचान खुद बनाओ। एक बच्चा जब चलना सीखता है कशिश, तब वो केवल दूसरों की नकल करता है लेकिन धीरे धीरे वो अपनी समझ से नए काम करना शुरू कर देता है।
0: जी हाँ,
1: यही सृजन की शुरुआत है। जीवन में भी ऐसा ही होता है, पहले हम सीखते हैं, फिर अनुभव लेते हैं और बाद में अपने विचारों से नया निर्माण करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जो व्यक्ति केवल दूसरों की राह पर चलता है वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है, लेकिन जो सृजन करता है वही भीड़ से अलग पहचान बनाता है।
0: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। साथ ही हम देखते हैं कि जीवन में हर नई शुरुआत भी सीखने से ही होती है। जैसे कि बचपन में हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं साथियों, फिर घर पर ही हम लोगों से व्यवहार करना भी सीख जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: यानी कि सीखने की जो ये प्रक्रिया है जागृति जी, वो इंसान को समझदार बनाती है। ये हमारी सोच को एक नई दिशा देती है। जैसे कि एक छात्र पढ़ाई से सीखता है, एक किसान मौसम और खेती से सीखता है, ठीक उसी प्रकार एक कलाकार अभ्यास से सीखता है साथियों, और एक खिलाड़ी मैदान से सीखता है।
1: जी हाँ,
0: यानी कि सीखने से अनुभव मिलता है और अनुभव से आत्मविश्वास पैदा होता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए दोस्तों, सीखना हमें कभी बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, केवल सीखते रहना और उसे जीवन में उपयोग न करना ऐसा है जैसे कोई

0: मेहनत से नया विचार पैदा कर सकता है। सृजन हर व्यक्ति के भीतर छिपी शक्ति है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि सृजन का मतलब ही है कुछ नया करना।
0: बिल्कुल,
1: कुछ नया पैदा करना या नई सोच पैदा करना साथियों। जैसे कि किसी समस्या का समाधान खोजना, हम देखते हैं कि एक जो शिक्षक है वो बच्चों को पढ़ाने का नया तरीका खोजे तो यह भी एक सृजन है। एक किसान पानी बचाकर खेती का नया तरीका अपनाए तो ये भी श्रोता साथियों सृजन की ही प्रक्रिया है।
0: बिल्कुल,
1: कोई लड़की घर बैठे छोटा व्यवसाय शुरू करे ये भी सृजन है। यानी कि सृजन का मतलब केवल मशीन बनाना नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने वाली नई सोच विकसित करना भी होता है।
0: जी हाँ,
1: आज कई लोग बहुत कुछ जानते हैं। मोबाइल में श्रोता साथियों हजारों वीडियो सेव है हमारे, किताबें पढ़ी हुई हैं, मोटिवेशनल बातें याद हैं, लेकिन जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दोस्तों जानकारी तभी उपयोगी होती है जब उसे काम में लिया जाए।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के बारे में सब कुछ जानता हो लेकिन खुद स्वस्थ जीवन न अपनाए तो वह ज्ञान उसका अधूरा है। यदि कोई युवा सफलता के नियम तो पढ़ रहा है लेकिन मेहनत शुरू ही ना करे तो सीखने का लाभ भी उसे नहीं मिलेगा।
0: बिल्कुल
1: ठीक उसी प्रकार साथियों, दुनिया में बदलाव उन लोगों ने किया है जिन्होंने सीखी हुई बातों को सृजन में बदला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सृजन करना बहुत जरूरी है, यानी कि सीखना बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारी युवा साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी ये बातें हम करते ही रहेंगे जागृति जी। लेकिन क्यों ना अभी मनोरंजन हमारे साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ करवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी कि सीखने से बेहतर सृजन करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि कशिश, हम बात करते हैं सृजन की, तो सृजन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर के डर को खत्म करना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उनका विचार गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे, यही डर उन्हें नया करने से रोक देती है। लेकिन याद रखिए, गलती करना असफलता नहीं बल्कि सीखने और सृजन की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति प्रयास करता है वही आगे बढ़ता है। और यही कहा भी गया है कशिश, की गलतियों से मत डरिए, वही सफलता का रास्ता खुलती भी है।
1: जी हाँ जागृति जी, अब यही प्रश्न ये उठता है कि हमारे युवा साथियों को सृजनशील बनना क्यों चाहिए? क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उनके पास ऊर्जा होती है, नई सोच होती है और कुछ कर गुजरने का साहस भी होता है जागृति जी। और आज का समय हम देख रहे हैं कि प्रतियोगिता का समय भी है, लेकिन दोस्तों, केवल डिग्री हासिल करना आपके लिए काफी नहीं है।
0: जी हाँ,
1: कंपनियां, समाज और देश ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो नई सोच रखते हो जागृति जी। ऐसे में समस्या का समाधान खोजना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सृजनशील युवा होते हैं वो हर परिस्थिति में अवसर खोजने की सीख रखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे शिकायत कम करते हैं और समाधान ज्यादा खोजते हैं। ऐसे में युवा समाज में एक नई रोशनी लेकर सामने आए हैं जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के समय में रोजगार की समस्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बहुत से लोग केवल नौकरी पाने के लिए सीखते हैं। यदि युवा सृजन करना सीख जाए तो वे स्वयं रोजगार पैदा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: नए व्यवसाय, नए तकनीक और नए विचार समाज को आगे ले जाते हैं। श्रोताओ, आत्मनिर्भर भारत का सपना अभी तभी पूरा होगा जब युवा केवल सीखने वाले नहीं बल्कि सृजन करने वाले बनेंगे।
1: बिल्कुल,
0: सृजन व्यक्ति को भीतर से खुश भी बनाता है। जब हम अपने हाथों से कुछ नया बनाते हैं तो आत्मसंतोष महसूस होता है, चाहे वो कविता हो, चित्रकला हो, संगीत हो, खेती हो या कोई नया काम। सृजन जीवन में उत्साह भर देता है, इससे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसका जीवन सकारात्मक बनता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें असफलता से डरने की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सृजनशील व्यक्ति है वह असफलता से नहीं डरता। कई कोशिशों में श्रोता साथियों, उनकी गलतियाँ होती है, लेकिन यही गलतियाँ आगे चलकर सफलता का रास्ता भी बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: जो लोग जागृति जी केवल सुरक्षित रास्ता चुनते हैं वे अक्सर सामान्य जीवन ही जीते हैं, लेकिन जो लोग नया करने का साहस रखते हैं वही इतिहास बनाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में यदि श्रोता साथियों पहली कोशिश सफल न हो तो निराश आपको नहीं होना है, क्योंकि हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि सृजन केवल प्रतिभाशाली लोग ही कर सकते हैं, लेकिन ये गलत धारणा है। श्रोताओं, हर व्यक्ति में कुछ नया करने की क्षमता होती है, जरूरत केवल उसे पहचानने और निखारने की है।
1: बिल्कुल,
0: छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ा बदलाव ला सकती है और एक छोटा विचार कभी कभी समाज की दिशा भी बदल देता है। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग दूसरों की नकल ज्यादा करने लगे हैं कशिश। कोई किसी की भाषा अपनाता है, कोई पहनावा अपनाता है, कोई जीवन शैली, लेकिन श्रोताओं, असली पहचान नकल में नहीं बल्कि अपनी मौलिकता में होती है। दुनिया उसी को याद रखती है जो कुछ नया देता है। कहने का तात्पर्य यह है श्रोता साथियों कि हमें अपने बच्चों और युवाओं को ये सिखाना होगा कि वे केवल अंक लाने के लिए न पढ़े बल्कि समाज के लिए कुछ नया सोचे। शिक्षा का असली उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति में रचनात्मक विकसित हो। जब शिक्षा और सृजन एक साथ चलते हैं तब समाज में विकास और सकारात्मक बदलाव आता है।
1: जी हाँ, इसी के साथ हम देखते हैं कि जब कोई युवा अपने दम पर कुछ नया करता है तो वह केवल खुद नहीं बदलता बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि एक युवा यदि गांव में रोजगार शुरू कर रहा है जागृति जी, तो कई लोगों को काम मिलेगा।
0: जी हाँ,
1: एक युवती यदि शिक्षा के लिए अभियान चलाती है तो कई बच्चों का भविष्य बदलेगा।
0: बिल्कुल,
1: एक किसान यदि नई तकनीक अपनाता है तो इससे दूसरे किसान भी प्रेरित होंगे। दोस्तों, यही सृजन की सबसे बड़ी शक्ति है।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि हमारे युवा साथी सपने तो देखते ही हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई कलाकार, साथी कोई सफल व्यवसायी, लेकिन सपनों को सच करने के लिए साथियों केवल सोचने से काम नहीं चलने वाला, हमें अपने सपनों को सृजन में बदलना पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि सपनों में मेहनत करने की आवश्यकता है, साथ ही अनुशासन और नए प्रयासों की भी जरूरत होती है। ऐसे में दोस्तों आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपके भीतर अपार शक्ति छिपी हुई है।
0: बिल्कुल,
1: केवल दूसरों को देखकर जीवन मत बिताइए, अपने भीतर की प्रतिभा को भी पहचानने की कोशिश कीजिए।
0: जी हाँ,
1: सीखिए जरूर, लेकिन केवल सीखकर मत रुकिए, क्योंकि जो सीखा है उससे कुछ नया बनाना है आपको।
0: बिल्कुल,
1: अपने गांव, अपने समाज और अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना है साथियों जिससे लोग आपको याद रखें।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि जो नया सोचता है वही समाज को आगे बढ़ाता है। हमें अपने जीवन में हर दिन कुछ नया करने की आदत डालनी होगी। नया विचार, नया तरीका, नई कला, नया समाधान, यही सृजन है। जब हम सृजन करना सीख जाते हैं तब हमारा जीवन केवल सामान्य नहीं रहता बल्कि प्रेरणादायक बन जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोता साथियों आपसे यही कहेंगे कि सीखने से आगे बढ़ते हैं और सृजन करके दुनिया बदलते हैं। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ और आज की इन्हीं बातों को हम यह विराम देना चाहेंगे, क्योंकि समय का मान रखते हुए अब हमें विदा लेना होगा।
1: बिल्कुल,
0: तो विदा हम जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhana.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपनी साथी अंजलि पारेशर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वॉकर रेडियो 90.8 FM। श्रोता साथियों, हमारा खास बाल जागरूकता कार्यक्रम जहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि जीवन की सही दिशा भी तय करती है। आज का विषय है पोषण वाली थाली की जीत। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि थाली भी जीतती है क्या, और अगर जीतती है तो किससे? चिप्स से, कोल्ड ड्रिंक से, या उन रंग बिरंगे पैकेट वाले खाने से जिनका स्वाद तो अच्छा लगता है लेकिन असर धीरे धीरे शरीर पर पड़ता है। आज के समय में बच्चों के सामने श्रोता साथियों सबसे बड़ी चुनौती यही आती है कि स्वाद और सेहत के बीच चुनाव करना पड़ता है। एक तरफ तुरंत मिलने वाला स्वाद जो जीभ को खुशी देता है, दूसरी तरफ पोषण जो शरीर को मजबूत बनाता है, दिमाग को तेज करता है और बीमारियों से बचाता है। लेकिन अक्सर श्रोता साथियों हम क्या चुनते हैं, वही जो तुरंत अच्छा लगे, और यहीं से शुरू होती है गलती। हमारे गांव, हमारे घर, हमारी रसोई, इन सब में पहले से ही पोषण छिपा हुआ है। दाल, रोटी, हरी सब्जी, दही, फल, ये सब साधारण दिखते हैं लेकिन असाधारण ताकत रखते हैं। फिर भी कई बच्चे इन्हें छोड़कर पैकेट वाले खाने की तरफ क्यों भागते हैं? क्या सच में स्वाद जीतता है या समझ की कमी हार जाती है? जानेंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से इन ढेर सारी बातों को। लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला यह गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने विषय से आपको रूबरू करा दिया था कि आज हमारी बातचीत होने वाली है पोषण वाली थाली की जीत। जी हाँ, जैसा कि गीत से पहले हमारा आपसे सवाल था कि कई बच्चे पैकेट वाले खाने की तरफ भागते हैं, क्या सच में स्वाद जीतता है या समझ की कमी हार जाती है। आज का ये नाटक भी इसी सवाल का जवाब देगा, जिसमें सिर्फ दो बच्चे हैं, कविता और सीमा। कविता जो है वो स्वाद की दीवानी है और सीमा जो है वो समझ की पहचान। दोनों की बातचीत में आपको अपने घर के बच्चे, अपने गांव की झलक, आपकी अपनी आदतें दिखाई देंगी। तो ध्यान से सुनिए, सोचिए और खुद से पूछिए आपकी थाली कैसी है, क्योंकि याद रखिए थाली सिर्फ पेट नहीं भरती, भविष्य भी बनाती है। तो आइए शुरू करते हैं पोषण वाली थाली की जीत।
1: कविता, आज मैं घर जाकर रोटी सब्जी नहीं खाऊंगी, मुझे समोसा चाहिए, चिप्स चाहिए और वो मसालेदार कुरकुरे भी, वही मजा है खाने में। रोज दाल रोटी कौन खाए।
2: अरे सीमा, स्वाद बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ स्वाद के पीछे भागना ठीक नहीं है। शरीर सिर्फ जिप से नहीं चलता, ताकत से भी चलता है, पता है तुम्हें? और ताकत जो है वो पैकेट से नहीं, पोषण वाली थाली से मिलती है।
1: अरे मैं खाती हूँ सब और ठीक हूँ, इतना सोचने की क्या जरूरत है, जो अच्छा लगे खाओ बस।
2: अरे सीमा, आज ठीक लगना और लंबे समय तक स्वस्थ रहना दो अलग अलग बातें हैं। पोषण धीरे असर जरूर दिखाता है, लेकिन गहरा असर भी करता है।
1: अच्छा बताओ कविता, तुम्हारी पोषण वाली थाली में ऐसा क्या खास है जो मेरे चिप्स में नहीं है?
2: बहुत फर्क है सीमा, पता है तुम्हें? थाली में दाल है, सब्जी है, रोटी है, दही है और फल भी है। इनमें शरीर बनाने, खून बढ़ाने, दिमाग चलाने और रोगों से बचाने की भी ताकत है। पैकेट में तो सिर्फ स्वाद है, पर अक्सर पोषण कम पाया जाता है।
1: मतलब कविता, पेट भरना और पोषण मिलना एक बात नहीं है?
2: बिल्कुल नहीं है। पेट तो बहुत चीजों से भर जाता है, लेकिन शरीर को सही चीज की जरूरत होती है। बस यही फर्क समझना जरूरी है हमारे लिए।
1: कविता, मैं जल्दी थक जाती हूँ, खेलते खेलते दम फूलता है, क्या इसका भी खाने से संबंध है?
2: हाँ सीमा, बहुत संबंध है। अगर खाना सिर्फ स्वाद वाला होगा और पौष्टिक नहीं होगा तो शरीर तो कमजोर होगा ही ना। आयरन, प्रोटीन, विटामिन, ये सब जरूरी है और पोषण वाली थाली शरीर को सहारा देती है।
1: तो मतलब मेरी थकान सिर्फ आलस से नहीं कविता, खाने की गलती से भी हो सकती है?
2: हाँ हो सकती है, कई बार समस्याएं वही होती हैं जहाँ हम ध्यान नहीं देते हैं, और इसमें भूमिका निभाती है रंगों वाली थाली।
1: कविता, ये रंग बिरंगी थाली वाली बात क्या है?
2: रंग बिरंगी थाली मतलब थाली में अलग अलग रंगों के खाद्य पदार्थ, जैसे कि हरी सब्जी, पीली दाल, सफेद दही और लाल फल। जितने रंग उतना विविध पोषण, एक जैसी चीजें रोज खाने से सब जरूरतें पूरी नहीं हो सकती ना, इसलिए।
1: अरे वाह, थाली भी इंद्रधनुष जैसी हो सकती है?
2: बिल्कुल हो सकती है, और यही इंद्रधनुष थाली सेहत बनाती है।
1: पर कविता, चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक इतने लोग खाते हैं, अगर इतने गलत होते तो सब क्यों खाते?
2: हाँ तुम्हारा सोचना सही है, लेकिन हर लोकप्रिय चीज अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। कभी कभी सुविधा या फिर स्वाद ज्यादा बिकता है, लेकिन रोज वही खाना खाना ठीक बात नहीं है। कभी कभार अलग भी खाया जा सकता है, पर रोज की आदत पोषण वाली होनी चाहिए।
1: तो कविता, तुम्हारे कहने का मतलब मना करना नहीं है, बल्कि दोनों में संतुलन बनाना है।
2: बिल्कुल, क्योंकि जीत रोकने में नहीं, सही संतुलन में है।
1: कविता, दादी कहती है घर का खाना ताकत देता है, पर मैं हंसकर टाल देती थी, पर अब मुझे लग रहा है वह बात सच थी।
2: बिल्कुल सीमा, क्योंकि घर का खाना जो होता है ना, वो सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि भरोसा भी देता है। हम देखते हैं कि वो ताजा होता है, संतुलित होता है और ज्यादा सुरक्षित भी होता है।
1: मतलब कविता, रोटी दाल कोई मजबूरी नहीं, ताकत है।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि साधारण दिखने वाली चीजें कई बार सबसे कीमती होती है और हम ये बात समझ ही नहीं पाते हैं।
1: कविता, मैं कई बार सब्जी छोड़ देती हूँ, बस रोटी खा लेती हूँ, क्या ये ठीक नहीं है?
2: सीमा, अगर शरीर को संतुलन चाहिए तो सबकी भूमिका होनी बहुत जरूरी है, और खाना छोड़ना तो बर्बादी भी है, इसलिए जितना चाहिए उतना ही खाना लो, लेकिन पूरा खत्म करो। यही आदत पोषण और बचत दोनों का संतुलन बताती है, और दोनों अच्छी चीजें हमें सिखाती है।
1: कविता, पहले मैं सब्जी से भागती थी, अब लग रहा है दोस्ती करनी पड़ेगी।
2: हाँ बिल्कुल, थाली से दोस्ती करो और कमजोरी से दूरी बनाओ।
1: कविता, खेलते समय मैं जल्दी थक जाती हूँ, तुम ज्यादा देर तक कैसे खेल लेती हो?
2: क्योंकि सीमा, तुम्हारा और मेरा खाना फर्क डालता है। सही भोजन ऊर्जा देता है, सिर्फ पेट भरना काफी नहीं होता, शरीर को सही ईंधन की आवश्यकता भी होती है। जैसे कि बिना अच्छे ईंधन गाड़ी नहीं चल सकती, ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी पौष्टिक खाद्य पदार्थों के बिना नहीं चल सकता है।
1: मतलब कविता, पोषण वाली थाली खेल भी जिताती है?
2: हाँ बिल्कुल, और यही तो असली जीत है।
1: अच्छा, अगर मैं आज से ही थाली सुधारूं तो क्या फर्क पड़ेगा?
2: धीरे धीरे तो बहुत ही फर्क पड़ेगा सीमा, ताकत, ध्यान, पढ़ाई, खेल सब पर असर दिखेगा, क्योंकि आदत एक दिन में नहीं बदलती, पर शुरुआत एक दिन से हो सकती है।
1: तो ठीक है, आज से मैं चिप्स कम, फल ज्यादा खाऊंगी, कोल्ड ड्रिंक कम, पानी ज्यादा पीऊंगी, और सब्जी से दोस्ती करूंगी।
2: बिल्कुल, अब तुम समझ रही हो मेरी बात को, बस यही तो पोषण वाली थाली की जीत है।
1: कविता, पहले मैं सोचती थी स्वाद ही जीतता है, पर अब समझ आया असली चीज सेहत की है। पेट भरना काफी नहीं है, शरीर को सही पोषण चाहिए।
2: हाँ बिल्कुल, और जो बच्चा ये समझ लेता है वह खुद को मजबूत बनाता है। थाली छोटी जरूर दिखती है, लेकिन असर बहुत बड़ा करती है।
1: आज से मेरी थाली में रंग होंगे, संतुलन होगा और समझ होगी। अब मुझे पता है असली हीरो पोषण वाली थाली में है।
2: हाँ बिल्कुल, और यही हमारी कहानी की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि दाल रोटी सब्जी खानी है, ताकत अपनी रोज बढ़ानी है, रंग बिरंगी थाली जीते, स्वस्थ बचपन आगे जीते।
0: तो साथियों, आपने सुना स्वाद और सेहत की इस बातचीत में जीत किसकी हुई? पोषण वाली थाली की। याद रखिए कि बच्चों की अच्छी सेहत, अच्छी पढ़ाई, अच्छी बढ़त की नींव सही भोजन है। थाली में संतुलन रखिए, रंग रखिए, पोषण रखिए, यही असली जीत है। तो हमने आज कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि किस तरीके से पोषण वाली जो थाली है वो हमारे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि ये सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, आज की कहानी ने हमें यह नहीं कहा कि स्वाद छोड़ दो, बल्कि यह सिखाया कि संतुलन सीखो। जो थाली रंग बिरंगी होती है वही शरीर को असली ताकत देती है। जब बच्चे अपनी प्लेट में सही चीजें चुनना सीख जाते हैं तो वे अपनी सेहत की जिम्मेदारी भी खुद उठाने लगते हैं। यही आदत उन्हें आगे बढ़ाती है। आज घर जाएं, अपनी थाली देखें और सोचें कि क्या इसमें पोषण है। अगर नहीं तो बदलाव आज से शुरू करें। और कहना चाहेंगे कि एक माँ की रसोई, एक किसान की मेहनत और एक बच्चे की सेहत, ये तीनों एक थाली में मिलते हैं। जब हम उस थाली का सम्मान करते हैं, सही भोजन चुनते हैं, तो हम सिर्फ खुद को नहीं पूरे समाज को मजबूत बनाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप खाने बैठें तो याद रखें कि आपकी थाली आपकी ताकत बने और आप समझदारी चुनें। तो आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: भाई ने बोलो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है।
1: हो भाई, अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: हो बे, प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: हो बे, आज नाना ना कदम है ई अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपे कारे सोचो है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बुन, इटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचावो, पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई एन बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मैं देखाए तो आपड़ने आपड़े पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
1: होवे, एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे, आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनिमिया थकी बची शकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
4: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
0: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
4: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनो ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहे हो आपरो सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणे मान स्वागत कर हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम की भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज अमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है कि मिट्टी ना कटाव ने अपने हरते रोकी शका ने कई कई वातनु अपने ध्यान राखवु है। तो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तक घना कानी वाते थाएंगा, पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहला आपने हमरा विदा गीत ने मरे करा अपनी वाते। तो भाई बोनो आप हमारे रहसू आपड़ू रेडियो अपनी वाते वाघ रेडियो 90.8 FM माते।

0: મેનમોનું ગીતના ઈશુ પૂરુના ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સૌનું ઘણેમાં સ્વાગત કરા હું અમારે આજે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે આપણે ગીત કે પહેલા વિશે ઉતાર્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હું કે મિટ્ટી કટાવને આપણે હરતે રોકી શકન કઈ કઈ વાતનું આપણને ધ્યાન રાખવું હે તો ભાઈ બોનો આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહે મનીષજી તો સૌથી પહેલા આપણે સાંભળી લણાની વાત મોરે કર આપણી વાતે સર નમસ્કાર
1: નમસ્કાર અંજલિજી
0: સર આપકા બહુ બહુ સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
1: આપકા ઓર વાગડ રેડિયો કા બહુ બહુ ધન્યવાદ
0: સર જૈસા કે આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જોડ રહે હૈ ઓર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે વાતચીત કા વિષય હૈ કે હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો બારિશ આને સે પહેલે હી મિટ્ટી કટાવ કે જો ઉપાય હૈ ઉન્હે કૈસે અપના સકતે હૈ क्योंकि हम देखते हैं कि बारिश का जो मौसम है वो आने वाला है और हम देखते हैं कि बहुत सी जगह थोड़ी बहुत बारिश हो भी रही है ऐसे में हमारी जो खेत की मिट्टी है वो बहकर न चली जाए उसके लिए क्या क्या उपाय हमें अपनाने हैं और हमारे जीवन में मिट्टी का क्या महत्व है
1: जी बिल्कुल वास्तविकता में अभी का जो समय है और हमारा वागड़ क्षेत्र जो है इसमें मिट्टी का कटाव हमारी कृषि की उत्पादकता और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिहाज से बहुत जरूरी है
0: बिल्कुल।
1: और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है ये वर्षा आधारित क्षेत्र है और इसमें जो वर्षा होती है वो न्यूनतम 700 से जो है 1000 मिलीमीटर या कभी कभी इससे ज्यादा भी होती है तो ऐसी स्थिति में और ज्यादा जरूरी हो जाता है और हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि किस तरह से हमारी कृषि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए और मिट्टी के साथ हमारे पर्यावरण के संरक्षण को बनाए रखने के लिए इसके कटाव को किस तरह से रोका जाए जिससे हमारी उपजाऊ मिट्टी बहके ना जाए और हमारी जो अमूल्य मिट्टी है उसको हम हमारे खेत में ही या हमारे गांव में ही बचा के रख पाएं।
0: बिल्कुल सर।
1: तो यदि हम मिट्टी के कटाव को रोकने की बात करते हैं तो इसके लिए प्रमुख रूप से हम इनको वर्गीकृत करके भी देख सकते हैं जिससे इनको समझना और करना भी हमारे लिए ज्यादा आसान हो सके। तो एक होते हैं इनमें कुछ प्राकृतिक उपाय, दूसरे यांत्रिक उपाय होते हैं और तीसरा कुछ जैव उपाय होते हैं। जैव उपाय प्राकृतिक उपायों की तरह ही होते हैं पर इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो

0: पहला है कि हमारी जो ढलान वाली जगहें हैं वहां पे हमको जो है कुछ बड़ी और लंबे समय तक चलने वाली घास का रोपण करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जिससे दो तरह के फायदे हैं, एक तो हमारे पशुधन के लिए लंबे समय तक इससे घास मिलेगी और उसकी जड़ों की जो संरचना होती है वो इस तरह से होती है कि ऊपरी सतह की जो मिट्टी होती है वो इसको बांध के रखती है और उस मिट्टी को बिल्कुल नहीं बहने देने से जो है वो रोकती है और इनका फैलाव जो होता है वो भी मिट्टी को संरक्षित करता है, क्योंकि आने वाला पानी जब हमारी मिट्टी के ऊपर सीधा गिरता है तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी को बहाता है या मिट्टी की जगह को परिवर्तित कर देता है। तो जब इस तरह की घनी घास हम लगाते हैं तो इससे सीधे हमारी मिट्टी पे या जमीन पे वो पानी न गिर के पहले उनकी पत्तियों पे गिरता है और उसका जो बहाव है उसको वो कम कर देता है। तो इस तरह की जो भी स्थानीय घास हमारे पास उपलब्ध है हम उनको जो है लगा सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि ढलान वाली जगहों पे मिट्टी के कटाव को किस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं, तो ढलान वाली जगह के समानांतर हमको जो है खेत बनाना चाहिए। तो खेत बनाने का मतलब यहाँ है कि हम जो जुताई करते हैं उसको ढलान के समानांतर करना चाहिए, न कि समान। यानी कि ढलान ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो हमको जुताई ऊपर से नीचे की तरफ न करके दाएं से बाएं या बाएं से दाएं करना चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल।
0: जिससे आने वाले जो पानी है और उसके बहाव को हम नियंत्रित करके हमारी मिट्टी के कटाव या बहाव को रोक पाते हैं। इसी तरह से यदि हम इसमें बात करते हैं तो अंतर्वर्ती वृक्षारोपण किया जा सकता है, जिसमें हम खेतों के किनारे पे या ढलान के बीच बीच में कुछ ऐसे पेड़ लगा सकते हैं जो पानी के बहाव के साथ मिट्टी के कटाव को भी रोकेंगे।
1: बिल्कुल।
0: और इससे हमारी भूमि की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी।
1: बिल्कुल।
0: अगर जिस तरह से हमने बात की कि हमारे स्थानीय और प्राकृतिक उपाय क्या हो सकते हैं, इसी तरह से यदि देखें तो दूसरा हमने जो बात की थी उसके अनुसार हम जो है कुछ यांत्रिक उपायों को भी अपना सकते हैं, क्योंकि तुरंत में यदि हम बात करें कि हम अपने ढलानों पे उस तरह के पेड़ नहीं लगा पाए हैं या घास नहीं लगा पाए हैं तो तुरंत इनको लगाना तो संभव है पर इनके लाभ को ले पाना संभव नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: तो इस स्थिति में हम तुरंत वाली स्थिति के लिए यांत्रिक उपायों को अपना सकते हैं, जैसे हम कंटूर बंडिंग कर सकते हैं। तो जो भी हमारी ढलान वाली जगहें हैं या खेत है उसके समानांतर मिट्टी के ऊपर जो है छोटे छोटे पत्थर के बांध बना सकते हैं, छोटे छोटे, ताकि बहने वाले पानी को जो है नियंत्रित किया जा सके और उसके साथ में जो मिट्टी बह के आ रही है वो उसको रोक के रखेंगे। तो इस तरह से हमारी मिट्टी के कटाव और हमारी मिट्टी के होने वाले नुकसान को हम इससे नियंत्रित कर सकते हैं। इसी तरह से जो है स्टोन बंडिंग की यदि बात करें तो हम पत्थर को ही बांधने की बात कर रहे हैं इसमें भी, तो इसमें ये होता है कि ऊपर की तरफ हम छोटे छोटे कंटूर बनाते हैं और नीचे आके बड़ा बनाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो जो थोड़ी बहुत मिट्टी बह के आई है या छोटे बहाव के साथ पानी जो तेजी से अंत में बह के जाना चाहिए उसको वो पूरी तरीके से रोकता है। इसके भी हमें वही लाभ मिलते हैं, हमारे भूमिगत जल को ये बढ़ाता है, हमारी मिट्टी के कटाव को रोकेगा और स्थायी रूप से धीरे धीरे हमारी संरचना को भी जो है ये सुधारने में मदद करता है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमारे खेत की संरचना भी इससे सुधरना शुरू होती है। गली प्लग की बात करें तो ये भी एक यांत्रिक उपाय हो सकता है, और तो जहां पानी ज्यादा तेजी से बहता है वहां हम छोटे चेकडेम या बोरी बांध बना सकते हैं। इनसे हम पानी के बहाव को भी नियंत्रित कर सकते हैं, पानी को एकत्र भी कर सकते हैं, भूमिगत जल को भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से यदि बड़े जल प्रवाह को हम रोकने की बात करें तो उसके लिए चेकडेम या एनीकट, जिसमें हमें सरकार के साथ मिलकर योजना बनाने की आवश्यकता होती है, हमारी पंचायत के साथ समन्वय करने की जरूरत है, तो इनको अपनी योजना में शामिल कर सकते हैं। तो ये दो तीन तरीके से उसी तरह से हमको फायदा करते हैं कि ये हमारी

0: मिट्टी के बहाव को रोकेंगे, पानी के बहाव को नियंत्रित करेंगे, पानी को एकत्रित करेंगे, हमारे भूमिगत जल को बढ़ाएंगे, और साथ में इससे जो अंत में सबसे बड़ा फायदा हमें मिलता है वो ये मिलता है कि हमारी जो मिट्टी थोड़ी बहुत बह के आ जाती है वो इन चेक डैम्स और एनी कट में आके रुक जाती है। तो जब ये खाली होते हैं तब हम अपनी मिट्टी को वापस ले जाके हमारे खेतों में डाल के हमारे खेत की उपजाऊ शक्ति को और ज्यादा जो है बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय में स्थानीय उपाय बताए, यांत्रिक उपाय बताए, यही सर जल प्रबंधन के क्या उपाय हैं जो हम कर सकते हैं?
0: जी, तो जल प्रबंधन ही हमारा जो है, वैसे देखा जाए तो जल और मिट्टी को तो अलग करके नहीं देखा जा सकता, पर क्योंकि जल प्रबंधन इसका एक महत्वपूर्ण अंग है और इसके बिना हम इसको नहीं देख सकते, तो जल प्रबंधन के उपाय भी हमारी मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और जल के जो है प्रबंधन इसके लिए जरूरी है। तो एक छोटा सा स्थानीय उपाय है कि हम जो है थावला बनाएं। तो पौधे के चारों ओर यदि हम थावला बना देते हैं तो थावला बनाने से जो है वहां पे पानी रुकेगा, और थावला क्योंकि थोड़ा सा गहरा होता है और उसके साइड में बॉर्डर ऊंची होती है तो इससे हमारी मिट्टी का बह के जाना भी जो है रुकना सुनिश्चित होगा।
1: बिल्कुल सर,
0: तो ये हम हमारे पेड़ या पौधों के आसपास जो है इसको बना सकते हैं। कई सारी जगहें हैं जहां पे या तो ऐसा लगता है कि पानी कम आएगा या कम पानी वाले क्षेत्र हैं जहां पे वर्षा जल कम होता है, तो वहां विशेष रूप से थावला बना के ही जो है बारिश की खेती या अन्य खेती मौसम में की जाती है।
1: बिल्कुल,
0: जिससे अधिक समय तक वहां पे जो है नमी और जल का प्रबंधन हो पाता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो आपने इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ये बताया कि हमें जल का प्रबंधन कैसे करना है। यही कृषि प्रबंधन के लिए भी हमें इस समय कुछ उपाय करने की जरूरत है, तो वो हम क्या कर सकते हैं?
0: जी, कृषि अंतर्गत जो हम प्रबंधन या उपाय कर सकते हैं उसके लिए हम सबसे पहली चीज जो देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी मिट्टी और पानी का जो नुकसान होता है या कटाव होता है या अपव्यय जिसको बोल सकते हैं वो होता है, तो ये ढलान वाली जगहों पे ज्यादा होता है। तो ढलान वाली जगहों पे हमको सीढ़ी नुमा खेती करने की आवश्यकता है, जिससे हर सीढ़ी पे हम हमारी मिट्टी और पानी के बहाव को नियंत्रित करके उसको रोक सकते हैं। इससे आसानी से हम बहाव और कटाव दोनों को जो है नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये सबसे उपयोगी खेती की पद्धति है जिसको हम ढलान पे सीढ़ी नुमा खेती के रूप में जानते हैं। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पे भी कई जगह पे इसको करते देखा गया है और ये हमारी परंपराओं में शामिल था।
1: बिल्कुल,
0: पर कहीं ना कहीं अब समय स्थितियों के परिवर्तन के कारण इसको कम देखा जाने लगा है, पर इसको करना जो है एक बेहतर उपाय है।
1: बिल्कुल,
0: उसी के साथ में यदि हम करना चाहें तो फसल को बदलना या ज्यादा तरह की जो है फसल को लगाना, ये दोनों चीजें जो है बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि हम खेत में लगातार जब फसलों को बदलते हैं तो इनकी जड़ों की संरचना, किसी की गहरी होती है, किसी की उथली होती है, किसी की फैली हुई होती है, किसी की बांधने वाली होती है, तो अलग अलग तरह की फसलों की जो संरचना है वो मिट्टी को अलग अलग तरह के पोषक तत्व भी प्रदान करती है और मिट्टी की जो गहराई है उसको सुधारने में भी जो है अपना योगदान देती है।
1: बिल्कुल सर।
0: दूसरा, यदि हम अलग अलग तरह की फसलों को एक साथ लगाने योजना बनाते हैं तो इससे भी हम हमारे मिट्टी और पानी के नुकसान को जो है कम कर सकते हैं, क्योंकि जैसा अभी हमने फसल बदलने की बात की, इसी तरह से जब अलग अलग तरह की फसलें हम लगाते हैं तो इनकी जड़ों की जो संरचना होती है वो अलग अलग तरीके से हमारी मिट्टी और पानी के बहाव को नियंत्रित करती है और इसके कटाव को भी नियंत्रित करती है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो एक और चीज होती है जिससे हम हमारी मिट्टी के कटाव और पानी के होने वाले नुकसान को भी जो है कम कर सकते हैं, इसको हम जब हमारे खेत खाली हो तब हम मूंग उड़द जैसी जो है मिट्टी को ढकने वाली फसलें बोएं। इससे हमारी मिट्टी जो है जब ढकी रहेगी खाली समय में तो उससे हमारी मिट्टी में जो जल संचयन क्षमता है
1: बिल्कुल
0: वो बढ़ेगी, तो अधिक से अधिक पानी को जो है ये सोख पाएगी और मिट्टी में जैव तत्व बढ़ेंगे। तो इस तरह की फसलों को भी समय समय पे लगा के आने वाले समय में होने वाले हमारे मिट्टी के कटाव और पानी के नुकसान को हम जो है कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि सर आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ये बताया कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हमें किन किन उपायों को अपनाना है, तो सर अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: अंत में हम जो हमेशा बात करते हैं, इसके लिए हम बात करते हैं बहुउद्देशीय कृषि वानिकी की। तो बहुउद्देशीय कृषि वानिकी हर किसान को जो है अपनाना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे लाभ हैं। ये मिट्टी का संरक्षण करते हैं, ये पानी का संरक्षण करते हैं, इससे हमें चारा हमारे पशुधन के लिए पर्याप्त मात्रा में मिलता है, हमें हमारे भोजन को पकाने के लिए लकड़ी मिलती है, हमें छाया मिलती है और समय समय पे मौसम के अनुसार हमें जो है हमारे परिवार के पोषण के लिए फल और अन्य सामग्री भी जो है इससे मिलती है। दूसरा, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो लगातार गिरते रहने से हमारी मिट्टी को अनेक तरह के पोषक तत्वों से समृद्ध और संपन्न बनाती है।
1: बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें ढेर सारी बातों को बताया है, तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपका और वागड़ रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं मनोज जिमकी अवडे अपने व्यस्त में मनीष जी जुड़े तक हता ने एने अपना ने घना करना तरीका बताया है जेने माध्यम तक की अपना मिट्टी कटाव ने रोकी सक। आशा कर हूँ कि हंगरी बातें आपने गमी होंगा, क्योंकि अभी टाइम थी गयो है अपने अनस कार्यक्रम तक सूटा पड़वा। तो सूटा तो पड़ा, पर साथ पहले हमारी लाइक और गीत तुम्हारे पड़ा सूटा।

भाई बहनों, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता नी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बार तेनू खवानू सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है, परंपरागत वाद्य यंत्रों का क्या महत्व है और ये वाद्य यंत्र से हम किस तरह से आनंदित होते थे, उत्साहित होते थे और अपने घरों में खुशियां मनाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वाद्य यंत्रों के महत्व के बारे में जरूर जानेंगे, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं परंपरागत वाद्य यंत्रों के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे स्टूडियो में प्रभुलाल जी आए हुए हैं, वो हमें बताएंगे कि किस तरह से वाद्य यंत्रों का महत्व था और आज के समय में ये वाद्य यंत्र कहीं लुप्त हो गए हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इन्हें हम वापस कैसे ला सकते हैं, इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें लेकर आज प्रभुलाल जी हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो पहले सुन लेते हैं उन्हीं की बातों को।
1: बिल्कुल। राम राम बब्बू काका।
2: राम राम
1: बब्बू काका। आपनों घणे मान स्वागत कर रहा हूँ अमारे आज

0: रे रे भाया गावडाणी मा के जो रे अरे के जो रे ढोल कुंडी नो रण को वागे सब निके जो रे अरे रण को वागे रे रे भाया ढोल कुंडी वागे रे रे भाया गाव गाव में के जो रे पुरानो या पड़ो वाद्य यंत्र सबने के जो रे अरे पुरान वाद्य यंत्र थकी हमारी जिंदगी बसेगा भई अरे पुरान वाद्य यंत्र थकी हमारो समाज सुधरेगा भई रे भाया गावठाणी में के जो रे अरे के जो रे आपड़ा गांव में सबने के जो वाद्य यंत्र निवास अरे सबने के जोरे रे भाया सबने के जोरे रे भाया गावठाणी मा के जोरे अरे के जोरे ढोल कुंडी नो रण को वागे सबने के जोरे रे भाया ढोगाव के जोरे अरे के जोरे ढोल कुंडी नो रण को वागे सबने के जोरे।
1: असीम की प्रभू काका आप गीत ने माध्यम से की अपने भाई बहनों ने परंपरागत जो वाद्य यंत्र है इन्हें महत्व ने बारे में घणो असल संदेश आलो है तापनु मु धन्यवाद करू चाहूंगा कि आप हमारे कार्यक्रम तक की जुड़े ने अमने अटली अच्छी जानकारी आली।
2: धन्यवाद।
1: जागृति जी, जैसा कि अभी हमारे बीच में प्रभुलाल जी जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि किस तरीके से हमारे जो परंपरागत वाद्य यंत्र है उनका एक अलग ही महत्व है। लेकिन अभी के समय में आधुनिकता के बढ़ते कई ऐसे युवा साथी हैं जो इन सारी चीजों से दूसरी ओर रुक कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार के जो डीजे हैं उन पर उनका ध्यान आकर्षित हो रहा है, तो किस तरीके से हमारे समाज के जो बुजुर्ग हैं वो उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं और उन्हें सही राह दिखा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
3: जी हाँ।
1: क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
3: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वाद्य यंत्रों को लेकर वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ,
0: इन्हीं उम्मीद के साथ आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपने अपने मैं देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा।
1: होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है जोड़ों में दर्द, उसके कारण और उपाय को लेकर। कशिश, हम देखते हैं कि जोड़ों में दर्द आजकल एक आम समस्या बन गया है। यह समस्या बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी हो सकती है। हम देखते हैं कि बदलती जीवन शैली, गलत खान पान और शारीरिक मेहनत की कमी इसके मुख्य कारण माने जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि समय रहते इसके लक्षणों को पहचान लिया जाए तो सही समय पर इसका उपाय किया जा सकता है और दर्द से राहत पाई जा सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो इसी विषय को लेकर हम श्रोता साथियों से आज कार्यक्रम में ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए पहले गीत सुन ले हम।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि जोड़ों में दर्द की समस्या के क्या कारण हैं और क्या उपाय हम अपना सकते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर गतिशीलता का आधार है और उसी गतिशीलता का आधार हमारे जोड़ होते हैं। चलना, फिरना, उठना, बैठना, काम करना, ये सब जोड़ों की ही कार्य क्षमता पर निर्भर करता है अंजलि जी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि आप गीत से पहले भी बताया था कि आज की बदलती जीवन शैली, खानपान की गलत आदतें और बढ़ता तनाव श्रोता साथियों जोड़ों में दर्द की समस्या को आम बना रहा है। ये समस्या केवल वृद्धावस्था तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि हमारे युवा साथियों और बच्चों में भी देखी जाने लगी है।
1: बिल्कुल कशिश, हम कह सकते हैं कि जोड़ों में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। उम्र बढ़ने पर हड्डियां कमजोर होने लगती है जिससे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, अधिक वजन, लंबे समय तक एक स्थिति में बैठना, गलत तरीके से उठना बैठना, चोट लगना या गठिया जैसी बीमारियां भी इसके कारण हो सकते हैं। ठंड और नमी के मौसम में भी यह दर्द बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल। इसी के साथ अगर बात करें जोड़ों में दर्द होने के कारणों को लेकर, तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने बताया अंजलि जी की बढ़ती उम्र एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों के बीच मौजूद कार्टिलेज घिसने लगता है जिससे जोड़ों में जकड़न और दर्द महसूस होता है।
1: बिल्कुल।
0: कई बार पोषण की कमी भी एक कारण है दोस्तों, यानी कि कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं जिससे जोड़ों में दर्द बढ़ता है। साथ ही अधिक वजन की बात करें तो अधिक वजन होने से घुटनों, टखनों और कमर के जोड़ों पर अधिक दबाव पड़ता है जो दर्द का कारण बनता है।
1: बिल्कुल कशिश, हम कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों से कि जोड़ों में दर्द होने पर चलने फिरने में परेशानी होने लगती है। जोड़ों में सूजन आना, अकड़न महसूस होना, सुबह उठते समय ज्यादा दर्द होना, उठने बैठने में कठिनाई और कभी कभी हल्की गर्माहट महसूस होना इसके सामान्य लक्षण है।
0: बिल्कुल।
1: दर्द बढ़ने पर हम देखते हैं कशिश के व्यक्ति अपने दैनिक काम ठीक से नहीं कर पाता। जोड़ों के दर्द से बचाव के लिए हमें संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: हमें दूध, दही, हरी सब्जियां, तिल, बादाम और धूप से मिलने वाला विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है। हल्का फुल्का हमें व्यायाम करना है, योग को अपनी जीवन शैली में अपनाना है और नियमित पैदल चलना जोड़ों के लिए लाभदायक हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: कहना चाहेंगे कशिश हमारे श्रोता साथियों से कि अधिक वजन होने पर वजन कम करना चाहिए, दर्द होने पर गर्म पानी की सिकाई करनी चाहिए जिससे राहत मिलती है।
0: बिल्कुल।
1: और ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखना चाहिए, अधिक दर्द होने पर हमें डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि जी, साथ ही अगर बात करें तो दोस्तों जब हम लंबे समय तक कहीं जगह पर बैठकर काम करते हैं या फिर हमारे जीवन शैली में व्यायाम की कमी होती है तो भी जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: जिससे अंजलि जी हम देखते हैं कि उनमें अकड़न आने लगती है। साथ ही दोस्तों झुककर बैठना, गलत तरीके से बैठना या फिर मोबाइल लैपटॉप का बहुत ज्यादा उपयोग करना जोड़ों के दर्द को और बढ़ावा दे सकता है। साथ ही अगर बात करें चोट या फिर अधिक श्रम की तो अंजलि जी हम देखते हैं कि कई बार अचानक से लगी चोट, गिरना या फिर बहुत ज्यादा मेहनत करना भी जोड़ों के दर्द का कारण बन सकता है। ऐसे में श्रोता साथियों हमें जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए कुछ उपाय अपनाने चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जैसा कि आपने बताया था अंजलि जी कि हमें संतुलित आहार अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए। दोस्तों दूध, दही, हरी सब्जियां, फल, मछली और तिल जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और इन्हें ही संतुलित आहार भी कहा जाता है। साथ ही अपनी जीवन शैली में नियमित व्यायाम को भी आप शामिल करें, जैसे कि आप श्रोता साथियों सुबह सुबह हल्का योग, प्राणायाम, स्ट्रेचिंग या फिर रोजाना टहलना जिससे जोड़ों को लचीला बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छी बातें चल रही है। ये बातें निरंतर यूं ही आगे ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
0: जी बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से बात कर रहे हैं जोड़ों में दर्द की समस्या को लेकर, गीत से पहले जैसा कि कुछ लक्षण और कारणों के बारे में हम जान पाए थे, अब यहीं अगर बात करें और भी कुछ उपायों के बारे में अंजलि जी।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, वजन नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि वजन ज्यादा होने के कारण हमारे जोड़ों पर इसका दबाव पड़ता है, जिससे जो है वो हड्डियां कमजोर हो जाती है और जोड़ों की दर्द की समस्या हमें होने लगती है।
1: जी हाँ।
0: साथ ही सही पोस्चर अपनाएं दोस्तों, यानी कि बैठते या उठते समय रीढ़ और गर्दन की सही स्थिति बनाए रखना जरूरी है। रोजाना आपको धूप लेना है। जैसे कि श्रोता साथियों, सुबह की धूप विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत होती है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ अगर कुछ घरेलू उपायों के बारे में बात करें तो हम देखते हैं दोस्तों कि हमें अपने पैरों की या फिर जोड़ों की गुनगुने तेल से मालिश करनी चाहिए। हल्दी वाला दूध हमें नियमित रूप से पीना चाहिए। अदरक और लहसुन का सेवन करना चाहिए। साथ गर्म पानी सेक भी हम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, हम कह सकते हैं कि जोड़ों का दर्द एक आम समस्या है, लेकिन सही जानकारी और उपाय अपनाकर हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं।
0: जी
1: श्रोता साथियों, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और सही जीवन शैली अपनाकर हम अपनी जोड़ मजबूत कर सकते हैं। इसके साथ ही समय पर डॉक्टर से हमें परामर्श लेनी चाहिए, ताकि गंभीर समस्या से हम बच सकें। हम कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि जोड़ हमारे शरीर का आधार है और उनका ध्यान रखना हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी। साथ ही दोस्तों, इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जोड़ों में दर्द जीवन को सीमित

0: कर सकता है, लेकिन सही समय पर जागरूकता, संतुलित जीवन शैली और उचित देखभाल बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि इससे ही इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। साथियों, हम देखते हैं कि स्वस्थ जोड़ ही सक्रिय और खुशहाल जीवन की कुंजी होती है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको बताएं तो कई बार हमारे जोड़ों पर मौसम परिवर्तन का प्रभाव भी पड़ता है। यानी कि अंजलि जी, ठंड, नमी और बारिश के मौसम में वायु दाब में बदलाव होता है, जिससे जोड़ों के आसपास की नसें अधिक संवेदनशील हो जाती है और दर्द भी इससे बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि इसके लिए हमें दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, हल्दी, अदरक, लहसुन, ये सारी चीजें खानी चाहिए, क्योंकि ये संतुलित पोषक आहार होते हैं। इसी के साथ हम हमारे दोस्तों को बताना चाहेंगे कि हमें बैठते चलते समय सही मुद्रा का ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल,
1: लंबे समय तक एक ही स्थिति में हमें नहीं बैठना है। जोड़ हमारे शरीर का आधार है, उनका ध्यान रखना हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जोड़ों का दर्द केवल उम्र बढ़ने का संकेत नहीं होता कशिश, या जीवन शैली, खान पान, मानसिक स्वास्थ्य और व्यायाम की कमी को भी प्रभावित करता है।
0: जी,
1: सही जीवन शैली अपना कर, पोषक आहार लेकर, समय पर चिकित्सकीय सलाह लेकर हम जोड़ों के दर्द को नियंत्रित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी। साथी दोस्तों, हम आपको बताएं तो नींद की गुणवत्ता का संबंध भी जोड़ों से देखा जाता है। यानी कि अनियमित या फिर अधूरी नींद शरीर की मरम्मत प्रक्रिया को प्रभावित करती है। साथियों,
1: बिल्कुल,
0: जिससे जोड़ों का दर्द लंबे समय तक बना रहता है। साथ ही लंबे समय तक चिंता, डर या उदासी रहने से शरीर में सूजन बढ़ाने वाले हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं।
1: जी हाँ,
0: जो दर्द को अंजलि जी और भी तेज कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, गलत जूते पहनना भी एक कारण है जोड़ों के दर्द का। हम देखते हैं कि बहुत ऊंची एड़ी वाले या फिर कठोर तलवे वाले जूते घुटनों और टखनों के जोड़ों पर बहुत अधिक दबाव डालते हैं, जिसके कारण भी दर्द होना सामान्य है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि जोड़ों में दर्द होने के क्या कारण है, क्या लक्षण है और क्या ऐसी चीजें हैं जिनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है।
0: जी जी,
1: तो आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल अंजलि जी।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में होने वाली स्वास्थ्यप्रद बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व नी कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो, आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान में आप सबनु स्वागत है। मोहु आपने हाथे आपनी बोन अंजलि पारेश्वर
1: ने मोहु आप सब नी बोन जागृति
0: स्वीकार करो अम्बे नु
1: राम राम।
0: भाइन बोनो आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।
1: जिम की भाई बोन कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने अमे हाजिर थी गया हा। ने आज ना कार्यक्रम ने माध्यम थे की अमे बातें करा रहा की एक अच्छा समाज नी हूँ पहचान है ने अच्छा समाज हूँ कहवा है ने समाज में हूँ समस्या आवे है ने समस्या ने बाद अपने हूँ समाधान करी शक इना सब माते आज अपने अंजलि बोन बातें करवा रहा
0: हो पे। तो जागृति बोन आपने देखा हो कि समाज सिर्फ अपने मन का ना समूह नहीं बल्कि समाज ही जगह है जे अपने एक बीजा हाथे रह हो खुशिया वाट हो एक बीजा ना दुख में हाथे उबर रह ने मल्ली ने भविष्य ने बेहतर बनावानी दिशा में काम कर रहा पर अवड़ेना टाइम में घनी आकी हुई जगह आपने देखा हो जे समाज में आपसी दूरी बढ़ी रही है सहयोग कम थी रू है ने नानी मोटी वाते माते विवाद वधी रू है ते एवं में आपने ने आ समझवन जरूरत है कि एक असल समाज नी हूँ पहचान है ने आ समाज अपने हरते बनावी शक
1: होवे। अंजलि बोन तो जेम की आपने बात करो कि समाज हूँ है तो भाई इन बोनो आजे आपने देखे कि घना समाज में घनी भी समस्या आपने देखा हा जे आपने एक बेहतर समाज बनवाते की रुकी दी है। सबसे की मोटी समस्या अंजलि बोन है आपसी विश्वास नी कमी आजे लोग एक भी समाते भरोसो कम करी रहे हैं। पहले जे गांव हता मोहल्ला हता इनमें लोग एक भी साने घर में बिना संकोच थकी आबो जाबो करी लेता था पर आजे आपने देखी रहा कि घना जगह माते आपने जई तो रहा पर आपड़ोपन जे है ई कम था तो जई रू है आजे आपने जई रहा लेकिन आपने ने इम लगी रू है कि मन का आपने ने अपनत्व नती आली रहा या पसे आपने देखी रहा कि कोई आपने घरे आवी जाए तो आपने ने गमतू नती पर पहले जमाना नी बात अलग हती। पहले जमाना में मन का वाट जोतो था कि आपने घरे मेहमान कारे आवेंगा
0: होवे। इने साथे जागृति बोन आपने देखो हो बीजी समस्या है स्वार्थ नी बढ़ती भावना आपने देखो हो कि घणी वगत आपने सिर्फ आपने फायदा ने बारे में विचार कर रहा हो समाज ने पड़ोसी ने हित ने बारे में कम विचार कर रहा हो पर आपने देखते होता कि पहले ना जे मनक हता ये सब ने हाथ लेने हिंटता था ने आपने देखी रहा हो कि अवड़े आज स्वार्थ नी स्थिति बढ़ी रही है इनमें सिर्फ व्यक्ति जे है ये खुद आपने बारे में सोचे है इने कारण समाज अपने कमजोर पड़ी रो है
1: होवे। ने अंजलि बोन समस्या नी बात करिस रहा तो आपने देखा कि आपने आजे छोटी छोटी बातों माते झगड़ो थी जाए विवाद थी जाए आपने देखा कि जमीन माते झगड़ो थी जाए पानी माते झगड़ो थी जाए आपने जे हैंडवानो रास्तो है इन्हें लेने झगड़ो थी जाए आ सब समाज में तनाव पैदा करी रहे हैं। आ सब जे झगड़ा है इस समय ने लेने है पैसों ने लेने है ने रिश्ता ने लेने है आपने देखा कि अंजलि पुन आ सब झगड़ा में अगर आपने पड़ी रहा तो आपनो समय भी खराब थी रू है पैसों भी जई रो है ने रिश्ता ने भी आपने नुकसान आ ली रहा क्योंकि जई वरा एक वक्त विवाद थी जा तो बीजी वरा आपने पेलो अपनत्व नती रहतु रिश्ता में
0: होवे। जागृति बोन आपे सही कीधु आपने देखा हो कि अवरेना टाइम में आपनो जे समाज है माते लड़ाई झगड़ा विवाद करे है कि आपड़े घर ना जे नाना सोर है ये भी घनी वगत पूछी ले है कि आवो केम थी रू है आटली सिस्त वात है आन में आटली लड़ाई केम थी रही है तो आपने सब ने समझवु होगा कि आ लड़ाई आपड़े केम करी रहा हूँ। इने साथे आपड़े देखो हो कि आपड़े घर में घना मोटा मन कर रहे है एना ना अनुभव नी भी घना मनक अनदेखी करी रहे है आपड़े देखो हो कि आपड़े जे बुजुर्ग है ये जीवन ना लंबा अनुभव लेने बैठे थके है પણ આજના ટાઈમમાં એનાની વાતને કોઈ મહત્વ નથી આલી રહ્યું આપણે દેખી રહ્યા કે અવડેનું જે સમાજ છે એ એનાને જ્ઞાન તકી વંચિત હે જે એનાને સહી દિશામાં નથી લઈ સહી
1: રહ્યા
0: એને સાથે આપણે દેખા હો કે સામાજિક જિમ્મેદારીની કમી ભી થઈ ગઈ હે ઘણી વખત આપણે દેખા હો કે કોઈ ભી મનક જે હે એ સાર્વજનિક જગહ માટે ગંદકી ફેલાવવામાં કોઈ સંકોચ નથી કરતો આપણે દેખા હો કે સામુદાયિક સંપત્તિને નુકસાન ઘણા મનકા આલે હે ને આ જે સમસ્યા હે ઈ અવડેના ટાઈમ મે આપણે દેખી રહ્યા ને આ સમસ્યા ને કારણ આપણે દેખો કે આ જે ચીજે હે ઈ ધીરે ધીરે સમાજ ની કમજોર ભી બનાવે હે
1: હવે અંજલિ બોન તો જેમ કે આજે આપણે સમાજ મે હું સમસ્યા હે એના બારે મે આપણે ભાઈ બોનો ને આપણે બતાડી અગાડી આપણે સમાધાન ને બારે બતાડંગા કે આ સબ વાતો નું સમાધાન હું થઈ શકે પણ એના પહેલા હમરે લઈ કર કેતને મોરે કર આપણી વાતે
0: હવે તો ભાઈન બોનું આપ હમરતે રેજો આપણો રેડિયો આપણી વાતે વાગડ રેડિયો 90.8 FM માતે

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

ये गजल मैंने मेरे से बहुत दिनों में इसकी धुन बनी, मैं पेश कर रहा हूँ। ये मोमिन खा मोमिन की गजल है, जिसका मतलब है रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। तो साथियों, ये थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यही समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।